सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक।
4: कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वेद परमात्मा को निराकार, निर्गुण, अखंड, अभेद और अदृश्य मानते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक शक्ति स्वरूप है। जैसे अग्नि में ताप, सूर्य में ज्योति, हवा में स्पर्श, जल में स्वाद है, उसी तरह प्रत्येक वस्तु में परमात्मा की शक्ति छिपी हुई है। सहज ढंग से कहा जाए तो जैसे बिजली के तार में विद्युत शक्ति छिपी है, स्विच ऑन करने पर कमरे में प्रकाश आ जाएगा, किंतु तार को काट कर देखा जाए तो वो शक्ति नहीं मिलेगी, पर छिपी हुई है। जैसे फूल में सुगंध है, परंतु फूल को नोचने पर गंध वायु में विकर्ण हो जाएगी, वो मिलेगी नहीं, पकड़ी ना जाएगी और ना छुई ही जाएगी। परमात्मा की शक्ति तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझी जाएगी। कबीर ने परमात्मा के इस रहस्य को बहुत ही सहज ढंग से कह दिया है। तेरा साई तुझ में जस पहुपन में बास, कस्तूरी का मीरक ज्यों फिर सूंघे घास। उन्होंने वेदांत और उपनिषदों के गंभीर विचारों को सहज बोध गम्य बना दिया है। स्वामी अर्थात भगवान मनुष्य में उसी प्रकार वर्तमान है जिस प्रकार फूलों में सुगंध है। मनुष्य अपने में छिपी हुई परमात्मा शक्ति को ना समझकर इधर उधर भटकता है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी गंध मिलती रहती है, किंतु मृग उसे ना समझकर इधर उधर भटकता रहता है, घास सूंघता रहता है। ठीक वैसे ही मनुष्य अपनी परमात्म शक्ति को ना समझकर जगह जगह भटकता रहता है। परमात्मा तो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि मुंह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान के विषय में कहा जा सकता है कि भगवान शब्द में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर समाहित है। भा से भूमि तत्व, गा से गगन तत्व, वा से वायु तत्व, वा के साथ के आ से अग्नि तत्व और ना से नीर तत्व, अर्थात इन पांचों की शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है, जो अखंड मंडलाकार विश्व मंडल में व्याप्त है। वही हम में, तुम में, खड़ग खंड में है। प्राणी का शरीर पांचों तत्वों से बना है। शरीर के नष्ट होने पर ये पांचों तत्व उन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। इसे कबीर ने इस रूप में व्यक्त किया है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर पूरे विश्व में परमात्मा की लाली देखते हैं और कहते हैं कि मेरे लाल की लाली अर्थात परमात्मा की शक्ति चारों ओर व्याप्त है। मैं जिधर देखता हूँ उधर उसकी लाली दिखाई देती है। उसको देखने के लिए जाने पर कबीर की आत्मा भी लाल हो जाती है। इसी भाव को वे दूसरी साखी में यूं प्रकट करते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, एतत् काहु ज्ञानी। इस साखी में उन्होंने भगवान शरीर को कुंभ माना है। उसमें वर्तमान जीवात्मा की शक्ति को जल बताया है। अखंड विश्व में व्याप्त परमात्मा की अनंत शक्ति को महासमुद्र का जल माना है, जिसमें मनुष्य का शरीर रूपी घट है और उसमें उसी समुद्र का जल भरा हुआ है। जब घट फूट जाएगा तो घट का जल समुद्र के जल में मिल जाएगा। ऐसे ही मनुष्य के शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो जीवात्मा की शक्ति परमात्मा शक्ति में विलीन हो जाती है, एवं शरीर के पांचों तत्व विभिन्न रूपों में पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान विभिन्न ढंग से जिन भावों की व्याख्या करते हैं उन्हें कबीरदास जी ने बहुत सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रकट किया है। वस्तुतः ज्ञानी लोग पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर परमात्मा के रहस्य को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर अपने अनंत साधना और चिंतन मनन से प्राप्त अनुभव के आधार पर परमात्मा के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान वाले पंडितों से कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। वे ये भी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगपुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर के विचार से पंडित वही है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ा है। कबीर का प्रेम भौतिक सुख शांति के लिए सांसारिक प्रेम नहीं है। कबीर का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रेम है जो आध्यात्मिक है, परलौकिक है। कबीर की आत्मा प्रियतमा है और परमात्मा प्रियतम है। वे अपने को राम की दुल्हनिया कहते हैं। परमात्मा के प्रेम की उसी सुर लहरी में सुर मिलाकर गा उठते हैं, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। परमात्मा प्रेम के रंग में रंग जाने पर फिर संसार का कोई महत्व ही नहीं। जब साधक साधना में सफल हो जाता है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाता है।
3: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में यह भक्ति गीत। अगला भक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में।

0: मुकेश के गाए इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 382

अपने मन में उपजे मोह की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी भगवान राम के बाल रूप की अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर रत्न जटित आभूषण, सिंह शावक की भांति कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं वाली ग्रीवा, लाल अधरों के पीछे ऊपर नीचे दो दो दंतलियां, सुंदर गाल और चंद्र किरणों की भांति शीतलता प्रदान करने वाली मधुर मुस्कान। शिशु रूपधारी श्री राम आंगन में अपनी परछाई देखकर नर्तन करते हैं। कभी कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसके फुदक कर भाग जाने पर ललचाने के लिए उसे पुआ पकवान दिखाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की ये लीला देख काकभुशुंडी के मन में सहज ही कौतूहल होता है कि प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, और मन में ये शंका आते ही उन पर प्रभु प्रेरित माया आच्छादित हो जाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको बताते आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर में सुबह 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। स्वास्थ्य वार्ता ये आप सुनेंगे 7:20 पर। गीत संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। सुबह 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। मॉर्निंग मेलोडी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। एक बजकर 10 मिनट पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4:29 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

संध्या 5:02 पर सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी और 5:32 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। 6:02 पर सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युव वाणी। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। संध्या 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार ये आप सुनेंगे संध्या 7:15 पर। ऑल टाइम हिट्स ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:30 पर। रात्रि 8:00 से आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 News@9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 से सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा ये आप सुनेंगे रात्रि 10:00। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और प्रतिदिन की तरह 11:10 पर कार्यक्रम का समापन होगा।

ये थी आज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: क्रीडा वार्तायाम् आईपीएल इति क्रिकेट क्रीडायाम् सनराइजर्स हैदराबाद दलम् आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलम् गतरात्रौ पञ्चस्तोभैः पराजित्य प्लेऑफ इति स्थानम् प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य एकाशीत्यधिकैकशतम् लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन एकोनविंशतिः कन्दुकक्षेपणचक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं सियाराम पासवान की आवाज में।

0: सियाराम पासवान के गाए इसी खोरठा लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं टीवी रोग के कारण, लक्षण और बचाव। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मिराजुल इस्लाम और इनसे बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद अली शम्बीर अंसारी।
1: श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं शहर हजारीबाग के चिकित्सक डॉक्टर मिराजुल इस्लाम, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे ट्यूबरक्लोसिस या टीवी रोग के बारे में कि ये किस तरह की बीमारी है, ये कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं और इसके लक्षण क्या हैं, इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।
1: ट्यूबरक्लोसिस किस तरह की बीमारी है?
2: ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअली बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग टीवी भी बोलते हैं
1: जी,
2: और हिंदी में इसे क्षय रोग, तपेदिक भी कहा जाता है
1: जी।
2: यह एक संक्रामक रोग है।
1: संक्रामक जी,
2: संक्रामक मतलब फैलने वाला रोग है।
1: एक से मतलब दूसरे को,
2: एक से दूसरे को हो सकता है
1: जी,
2: जिसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं
1: जी।
2: और ये एक्चुअली इसका मुख्य कारक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस
1: जी।
2: और
1: माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस,
2: ये मतलब विश्व का, संसार का दूसरा सबसे खतरनाक बीमारी है जो फैलने वाली होती है
1: जी।
2: और ये फेफड़े जो है, लंग्स फेफड़े को प्रभावित करती है,
1: शरीर का जो अंग है आंतरिक अंग,
2: फेफड़े को प्रभावित करती है। फेफड़े के साथ साथ ये ब्रेन मतलब मस्तिष्क को, रीढ़ को, हड्डियों को भी प्रभावित करती है
1: जी।
2: और उसके साथ साथ आपका स्किन
1: जी
2: और लीवर को भी प्रभावित कर सकती है
1: जी, जी, जी।
2: बहुत सारे बॉडी में सिस्टम भी होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी
1: उसको भी प्रभावित
2: करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित
1: जी,
2: करती
1: जी,
2: है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित
1: ज्यादातर कॉमन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन से जो
2: संबंधित है, इसीलिए वो सब भी पाया जाता है
1: जी,
2: मतलब ब्रेन से रिलेटेड और रीढ़ से रिलेटेड, जो स्पाइनल बोलते हैं, स्पाइनल से रिलेटेड वो सब भी
1: जी
2: देखी जाती है
1: सर। तो एक चीज हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसे श्वसन क्रिया से संबंधित जो इसमें प्रभाव पड़ता है, फेफड़ा को जो ये संक्रमित करता है, तो एक निमोनिया की भी एक बीमारी आती है सर, तो उसमें भी फेफड़ा ही संक्रमित होता है,
2: उसमें
1: दोनों में किस तरह से ये अंतर है?
2: दोनों में अंतर ये है कि देखिए, एक्चुअली निमोनिया में सर्दी, खांसी, जुकाम, फेफड़ा प्रभावित होती है, खांसी भी होती है
1: जी, जी।
2: और इसमें भी खांसी हो जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये खांसी अगर 3 सप्ताह से ज्यादा है
1: जी,
2: तो फिर हम लोग इसको एक सस्पेक्टेड केस में डालते हैं, हो सकता है मे बी इसको ट्यूबरक्लोसिस
1: है जी।
2: और खांसने के साथ साथ बलगम भी आ रहा है
1: जी, जी।
2: और बलगम में कभी कभी खून का भी अंग आता है, ब्लड स्टेंट स्पूटम बोलते हैं, वो उसको भी अंग आ रहा है, और पेशेंट को बुखार भी रहता
1: बुखार
2: है,
1: है,
2: बुखार भी रहता है, उसका अचानक से वजन कम, वेट लॉस, वजन भी कम होने लगता है, इस तरह का लक्षण जिसमें दिखता है।
1: और एपेटाइजिंग में भी, भूख में भी इसमें अंतर पड़ता है,
2: भूख में भी अंतर पड़ता है, भूख बहुत कम
1: लगने लगती है जी।
2: तो हम लोग जनरली ये सब फाइंड आउट करते हैं
1: जी, जी।
2: कि मतलब पेशेंट हमारे पास आया, हम उसको क्लिनिकली एक बार थोड़ा डायग्नोसिस कर लेते हैं, बाद में तो टेस्ट वगैरह होते ही रहते हैं, तो उससे तो फाइनल डायग्नोसिस में हम पहुंच ही जाते हैं
1: जी।
2: तो एक क्लिनिकली डायग्नोसिस करते हैं कि हाँ, इसको मे बी ट्यूबरक्लोसिस
1: हो सकता है।
2: ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअली शुरुआत में ही पकड़ लेने पे ही अच्छी होती है, क्योंकि इसको हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह से कवर कर सकते हैं। और निमोनिया में तो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, और अगर लक्षण के अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं तो निमोनिया तुरंत चला जाता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है थोड़ा सा समय लगता है।
1: सर, तो आप जैसे आपने कहा कि ये इन्फेक्शस डिजीज है, एक से दूसरे में ये फैल सकता है, तो ये तो हो गया कि किसी व्यक्ति को अगर वो सफर कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस से, तो दूसरे के

0: सामने अगर जाता है तो उसको प्रिकॉशंस रहता है। इसके और भी दूसरे कोई कारण जैसे खान पान वगैरह या कुछ
1: वगैरह अगर जो पेशेंट है
0: जी,
1: मान के चलिए कि कोई मतलब ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है
0: जी,
1: तो आप उसके साथ बातचीत अगर वो खांस रहा है छींक रहा है तो ये हवा में फैलता है, तो उसके साथ कोई एक स्वस्थ व्यक्ति भी है साथ में उसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है या वो उस जगह पे छींक रहा है तो उसको भी चांसेस है कि वो बीमारी उसको हो सकती है
0: छींकने या खांसने से बाहर हवा में आया फिर।
1: और सर और अगर जैसे कि कोई चीज वो पीता है
0: जी,
1: एक ही ग्लास में वो पीता है उसी ग्लास से वो
0: पानी पी रहा है या कुछ और चाय वगैरह
1: पी रहा है, चाय वगैरह पी रहा है, इससे भी जो है बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये बीमारी जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे भी, आपके शरीर में जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है अगर वो कमजोर है तो आसानी से ट्यूबरकुलोसिस आपको पकड़ सकता है। और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जनरली आपको एचआईवी के मरीज में
0: जी,
1: जो एड्स का पेशेंट है
0: कम हो जाता
1: कम,
0: है
1: कम कम हो जाता है, मधुमेह का पेशेंट है जो कम डायबिटिक का पेशेंट है इन लोगों में तो ऑलरेडी पहले से ही
0: कमजोर है,
1: कमजोर है तो इन लोगों को ये बीमारी बहुत आसानी से हो सकती है।
0: अरे सर इसमें किस और जानना चाहेंगे कि ये इसमें कोई आयु भी निश्चित है क्या कि जैसे बच्चों में होता है या बड़ों में होता है या किसी को भी हो सकता है? ये
1: जनरली किसी को भी हो सकता है
0: जी जी जी,
1: लेकिन देखा जाता है कि 40 के ऊपर जो हो जाते हैं
0: जी जी
1: उन लोगों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते
0: हैं, बहुत ज्यादा होते हैं
1: क्योंकि एक मतलब एक एज तक इम्यूनिटी जो है आपका
0: बना रहता
1: बना
0: है,
1: रहता है।
0: उसके बाद वो कम
1: उसके बाद सारा सिस्टम भी तो धीरे धीरे धीरे थोड़ा कमजोर भी होने लगता है, तो जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी कमजोर हो जाती है तो होने के चांसेस बहुत।
0: ट्यूबरकुलोसिस के अलावा और भी कोई बीमारी मतलब उसको संक्रमित हो सकता है किसी बीमारी से?
1: हाँ, हो सकता है।
0: तो इसके लिए जरूरी है कि वो खान पान में वो सही ध्यान रखे,
1: खान पान में शरीर का ध्यान देना है, जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है वो सब खाते रहना है।
0: तो जैसे उन चीजों में विटामिन वगैरह या फिर खान क्या आ सकता है?
1: खान पान में आप जैसे कैल्शियम प्रोटीन रिच्ड कार्बोहाइड्रेट रिच्ड ये सब आपको लेते रहना है, विटामिन्स वगैरह भी लेना है। आजकल का तो लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिनरल्स विटामिन आप छोड़ दे रहे हैं खाने में
0: जी,
1: तो इसके लिए एक है कि आप एक मल्टी विटामिन आप लेते रहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी शरीर में बनी रहेगी, किसी भी रोग से आपका शरीर आसानी से फाइट कर सकता है,
0: क्षमता आपका बना रहेगा तो उससे आप बच सकते हैं। अब जैसे सर किसी को अगर किसी खुदा ना खास्ते अगर संक्रमित हो गया ट्यूबरकुलोसिस से या क्षय रोग से तो फिर वो उसका जांच पड़ताल जो है वो किस तरह से आप करते हैं, टेस्ट वगैरह कराते हैं?
1: हाँ, टेस्ट वगैरह होती है
0: जी,
1: हम लोग तो इसमें खासकर जनरली हम लोग क्लिनिकली डायग्नोसिस तो करते ही हैं, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाते हैं सीबीसी पूरा उसका ब्लड प्रोफाइल का जांच करवाते हैं,
0: एक्सरे वगैरह
1: भी करवाते हैं और फिर एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं मोनिटुक्स टेस्ट जनरली अब वो मतलब हम लोग बहुत कम ही करवाते हैं आज के समय में बहुत कम होता है, लेकिन एक सीबी नेट टेस्ट होता है जो कि बलगम का टेस्ट होता है, उससे हम लोग टीबी को बैक्टीरिया को फाइंड आउट करते हैं कि उसके शरीर में है कि नहीं है, वो बलगम का जांच होता है।
0: और अगर ये डायग्नोसिस में आ गया कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है ये पेशेंट, तो फिर उसका इलाज जो है वो किस तरह का और कितने दिनों का?
1: इलाज तो 6 से 9 महीने तक चलता है
0: जी,
1: अगर पेशेंट प्रॉपरली दवा खा रहा है
0: जी
1: तो वो कम्प्लीटली ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो दवा हमेशा लेता रहे, डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहे
0: जी,
1: अपना वजन जो है वो
0: उसका
1: मेजरमेंट भी करता रहे हर महीने में 15 दिन में, वो अपना वजन भी खान पान पे विशेष ध्यान
0: किस तरह का उसको खान पान लेना है उस समय?
1: खान पान अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खा सकता है,
0: अंडा वगैरह
1: अंडा दूध वगैरह ये सब लेते रहना है
0: जी।
1: जनरली भी तो देखने को मिलता है कि ज्यादातर मरीज तो हम लोग का बहुत ही गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत बहुत कम पेशेंट हमको मिलता है कि जो अच्छे फैमिली से
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी,
1: तो जो पुअर मरीज है तो वो इतना तो ले नहीं
0: तो
1: सकता है।
0: देहात में जैसे अंडा वगैरह मुर्गे वगैरह तो वगैरह तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: अब फलों की बात अगर आती है तो शायद उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर फल को प्रयोग करना चाहे तो किस तरह का फल वो ले सकता है जिससे?
1: फल में भी आप एक सेब वगैरह खा सकते हैं
0: जी, केला वगैरह की बात अगर आती है तो ये
1: केला थोड़ा सा सेब नहीं है हानिकारक है, लेकिन सेब आप ले सकते हैं
0: जी जी,
1: बाकी जो जनरल खाना है वो आप अपना लेते रहिए प्रॉपर, दवा जो है वो आपको प्रॉपर लेते रहना है। 6 से 9 महीने का कोर्स होता है
0: जी,
1: वो आपका चलता रहेगा
0: जी,
1: बीच बीच में आप

0: व्यक्ति में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है
1: जी,
0: लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में है।
1: अच्छा जी।
0: अगर वो मतलब एक संक्रामक व्यक्ति से मिलता है
1: जी जी,
0: तो उसको अचानक बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है, उसको उस तरह का फेवरेबल कंडीशन मिलता है
1: जी जी,
0: तो एक्टिव में चला जाता है
1: जी जी।
0: तो फिर उसमें टीबी के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और एक होता है एक्टिव, एक्टिव मतलब कि सीधा कि वो
1: सफर कर रहा है,
0: सफर कर रहा
1: जी जी।
0: तो वही दो दो फेस
1: है, एक्टिव और इनएक्टिव
0: होता है। एक एक्टिव बोल सकते हैं, एक इनएक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं एक लेटेंट और एक एक्टिव। तो वो दो प्रकार का टीबी है।
1: तो आखिर में सर, हमारे सुनने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की बीमारी से लोग ग्रसित ना हो? आमतौर से खांसी सर्दी बुखार तो होती ही है लोगों को, लेकिन जैसे किसी कभी कभी ध्यान नहीं दिया खांसी पर, सर्दी खांसी हो गई है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो सफर कर सकते हैं।
0: हाँ, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का काल
1: जी जी समय चल रहा है,
0: कोरोना का समय चल रहा है, मास्क यूज कर रहे हैं
1: जी,
0: तो बहुत अच्छी बात है। ये मास्क आप कोरोना से भी बचा रहा है और टीवी
1: से भी बचा सकते हैं जी।
0: एक्चुअली जहाँ भीड़ भाड़ एरिया है, लोग छींकते हैं, खांसते हैं, कौन किस तरह का पेशेंट है
1: जी जी,
0: ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हो सकता है कि उससे भी आपको फैलता है, तो हम तो फर्स्ट डिफरेंस करेंगे कि आप मास्क यूज कीजिए, कहीं भी खांसे मुंह पे रुमाल रख लीजिए, भीड़ भाड़ एरिया में छींक।
1: अच्छा, घर के जैसे मेंबर में किसी सदस्य अगर हो गया हो तो उन और जो व्यक्ति हैं घर के जो सदस्य हैं,
0: थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, यही सब, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है उसको। ऐसा भी नहीं कि आप उसको पूरा आइसोलेट कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, तो पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली डिप्रेशन में चल जाएगा, उस तरह भी नहीं। वो होता है कि वो थोड़ा सा आपको अपने आप में सावधानी रखना है
1: जी जी। और ताकि पेशेंट को ये फील भी इतना नहीं हो पाए कि
0: नहीं हो पाए कि लोग हमसे अलग हो
1: इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित जो जानकारी हमारे साथ आपने साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, टीवी रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव। इसके बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मिराजुल इस्लाम और इनसे बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। अब सुनिए कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में यह गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय

0: ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने

0: राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश की है संभावना। किसानों से खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण। कहा, मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर किया गया नियुक्त। आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
1: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है। और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
0: पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक डॉक्टर प्रदीप पॉल ने कहा कि झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित सभी आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की आपूर्ति श्रृंखला, टर्मिनल, डेपो और रिटेल आउटलेट स्तर पर सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा ईंधन भंडार की लगातार निगरानी की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में इसकी उपलब्धता सामान्य है। तेल कंपनियों ने लोगों से घबराकर खरीदारी नहीं करने और ईंधन उपलब्धता संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद रांची की मेयर रोशनी खलको ने आम लोगों से पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने को कहा है। साथ ही उन्होंने देश हित में अभी सोने की खरीदारी नहीं करने की भी अपील की है।
2: मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि अपने घर में जो हम लोग बचत करेंगे वो अपने लिए होगा, उसी तरह से देश के लिए जो हम बचत करेंगे वो देश के लिए होगा, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे वो डीजल के रूप में हो, चाहे वो आप सोना के रूप में हो। आज जो बचत होगी वो हमारे देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है।
0: राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री ने किसानों से सही योजना और आधुनिक खेती तकनीक से इस परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने की अपील की।
3: जहां भी मई जून में बारिश हो तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, मेड़ को मजबूती से बनाए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे, धान पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। वैसे फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है जैसे मूंग, सोयाबीन, मड़ुआ, अन्य फसलों को अपनाएं।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क धंसने और पत्थरों के टूटने की घटनाएं विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई की उजागर करती है। उन्होंने साहिबगंज उपायुक्त से मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक नए समाचार

0: पत्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है और मीडिया समाज की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है तथा मीडिया को सत्य, नैतिकता और जनहित के मूल्यों के साथ कार्य करना चाहिए।
1: एक जुड़ाव जो पत्रकारिता के साथ, जो अखबार के साथ होता है, बहुत ही इमोशनल भी होता है, बहुत बदलाव का एक जरिया भी होता है, एक क्रांति का भी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक कह लें, इसकी भी भूमिका में ये रहता है।
0: इस समारोह में मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मुख्य संपादक अम्बरीश श्रीवास्तव मौजूद रहे। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को केंद्र सरकार में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 21 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राजधानी रांची के थरपकना स्थित यूनियन क्लब कराटे सेंटर में शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक दिवसीय विशेष कराटे प्रशिक्षण सह बेल्ट ग्रेडेशन शिविर का आयोजन किया गया। बेल्ट ग्रेडेशन में सफल प्रतिभागियों को बेल्ट प्रदान किया गया, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि श्वेतांग सेन और विशिष्ट अतिथि राम चटर्जी ने मेडल देकर सम्मानित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड में नियुक्तियों का दौर, देश में पर्चा लीक। प्रभात खबर ने झारखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है 59 केस के रैयतों को 9 करोड़ से ज्यादा मिलेगा मुआवजा। दैनिक जागरण ने खूंटी में किशोर किशोरी की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 22 से 26 मई के बीच मॉनसून के केरल पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा, झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, ईंधन भंडार की लगातार हो रही निगरानी। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश की है संभावना, किसानों से खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण, कहा मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर किया गया नियुक्त, आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेशरम से यह गीत, अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: The Telelock app, website www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है चल मेरे भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।
1: वाजिद अली के आवाज में तेरी मेरी कहानी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम बस अभी लौटते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से. और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से. अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने. शेखर रविजयानी और सलीम मर्चेंट साथ ही नीति मोहन की आवाजें हैं.

0: सन ऑफ सरदार, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अनजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। कौसर मुनि ने इसको लिखा है और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जुजलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत आपने सुना। समीर के बोल थे साजिद वाजिद का संगीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख

दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

शहनवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म

आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: Nine, eight, seven, six,

0: हजारी बाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का नमस्कार जोहार। दोस्तों, पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है, इस गुण को खोइए मत। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए।

दोस्तों, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष अब पूरे हो जाएंगे। 8 जून 2026 को आकाशवाणी अपनी स्थापना दिवस के 90 वर्ष गौरवशाली पूरे करने जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद प्रसारण नेटवर्कों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसे आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया। आपको यह बता दें कि आज इसके देश भर में लगभग 591 से अधिक केंद्र हैं और यह 23 भाषाओं और 146 बोलियों से अधिक बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण करता है। आकाशवाणी केवल समाचार और सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत को सहेजने वाली एक अनमोल धरोहर है। आकाशवाणी के माध्यम से विविध भारती राष्ट्रीय समाचार सेवा और कृषि जगत से जुड़े कार्यक्रम इसके सबसे लोकप्रिय खंडों में शामिल है और इसे सभी लोग बहुत ही लोकप्रिय है और इसे सभी लोग चाहते भी हैं और इसका हर तरह से जहां भी रहें, वो अपने घर में हो, बाहर हो, खेत खलिहान में हो, सब जगह आकाशवाणी के माध्यम से सभी तरह की जानकारियों को वो ले सकते हैं।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, विश्व फेयर प्ले दिवस हर साल 19 मई को मनाया जाता है। यह दिन खेलों में ईमानदारी, सम्मान, समानता और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य एथलीटों, कोचों और दर्शकों के बीच जीत की अंधी दौड़ के बजाय नैतिक मूल्यों और गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। विश्व फेयर प्ले दिवस का महत्व भी बहुत है। इसमें सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से खेल नियमों और निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, प्रतिद्वंदियों के साथ भी गरिमापूर्ण व्यवहार रखना और सभी खिलाड़ियों को समान रूप से अवसर देना भी है। ऐसे भी खेल कूद में सभी अपना करियर भी बनाते हैं और इसमें आगे बढ़ने के अवसर भी तलाशते हैं। और इसके इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर 19 मई को आधिकारिक तौर पर विश्व फेयर प्ले दिवस के रूप में घोषित किया था। इसे पैनेथलान इंटरनेशनल कमिटी फॉर फेयर प्ले और यूरोपियन फेयर प्ले मूवमेंट के सहयोग से स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल समिति द्वारा हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को विश्व फेयर प्ले पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो खेल के मैदान में या उसके बाहर उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। तो आज का मौसम के बारे में बता दें कि आज मौसम साफ रहेगा, धूप रहेगी, इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए गर्मी बढ़ने के चलते अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें, घर से निकलते समय पूरा ध्यान रखें कि हम किस तरह से रहें, कैसे सूती कपड़ा पहने, ढीला कपड़ा पहने, साथ में पानी जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं हम बाहर जाते हैं और रास्ते में साफ पानी पीने लायक नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने पास में पानी रखना चाहिए। और जहां तक आज सूर्यास्त का समय है तो 6:30 पर है और कल सूर्योदय का

दोस्तों आज 19 मई है, तो आज जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज ही के दिन 1911 में पाक्स कनाडा दुनिया की पहली राष्ट्रीय उद्यान सेवा आंतरिक विभाग के तहत डोमिनियन पार्क शाखा के रूप में स्थापित की गई थी। 1917 में आज ही के दिन नॉर्वेजियन फुटबॉल क्लब रोसेनबोर्ग बीके की स्थापना की गई थी। 1922 में आज ही के दिन सोवियत संघ में पायोनियर युवा संगठन की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1961 में वेनेरा कार्यक्रम के एक विनस पास करके किसी अन्य ग्रह द्वारा उड़ने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया था।

0: मोहब्बत के दावे करते हो और फिर मरने की बातें करते हो, बात में दम नहीं है।
1: कौन साला मरता है, हा? कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि, और अगर मर भी गया मेम साहब, तो हमेशा के लिए धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बनकर।
0: इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे देव?
1: मुझसे क्या पूछ रहे हो अंजलि?

1993 में आज ही के दिन भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था। 19 मई 1934 को अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1938 में कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1947 में लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी टीसी योहानन का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि आज के दिन किनकी पुण्यतिथि है, यानी किनका निधन हुआ। तो आज ही के दिन 1904 में टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ था। 1989 में आज ही के दिन हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। 1996 में प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1997 में फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार शोम्भु मित्रा का निधन हुआ था। 2008 में आज ही के दिन भारतीय नाटककार और रंग मंचकर्मी विजय तेंदुलकर का निधन हुआ था।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। जो दोस्तों, जिस तरह हमें खुद के लिए दुख पसंद नहीं है, ठीक उसी तरह दूसरे लोगों को भी दुख पसंद नहीं है। तो हमें दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के लिए पसंद नहीं है।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: 10, 9, 8, 7, 6,

0: हेलो हजारीबाग।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में, महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज़ में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जफर गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं तक, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
4: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई गांवों में
2: के जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती, इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में, प्रदीप के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है, और फिल्म है 2 बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी, और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है, और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका हमारा हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से

मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार, संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर, रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल सा, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं, यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए। ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

0: जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटकेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां, और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम।
1: तो थे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी, कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित, नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा, कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से 1 जून से देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में जाकर मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को संतुलित खाद उपयोग के लिए जागरूक करेंगे।
2: कृषि विभाग ने, ICR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे।
1: इसे लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। इस बढ़ोतरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 101.76 रुपए और डीजल की कीमत 96.52 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह वृद्धि 15 मई को हुई, 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद हुई है। यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होमुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर

0: नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम में नक्सा पास से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम में प्रति नियुक्ति पर तैनात कार्यपालक अभियंता के स्थान पर सहायक नगर नियोजक यानी एटीपी को नक्सा पास का कार्य सौंपा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में रांची में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ग्रामीण जनता को वनों से जोड़ने और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ वन सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर पुनर्जीवित करने, मुआवजा मामलों का त्वरित निपटारा करने, लैंड बैंक बनाने और फॉरेस्ट क्लियरेंस में तेजी लाने के साथ वन भूमि अतिक्रमण व अवैध खनन रोकने पर जोर दिया। साथ ही इको टूरिज्म, बुनियादी ढांचा विकास और मानव पशु संघर्ष कम करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया ताकि वनों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। संसद रत्न अवार्ड समिति ने संसद में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने, सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस सम्मान को गोड्डा और झारखंड की जनता के विश्वास और आशीर्वाद का सम्मान बताते हुए इस क्षेत्र की जागरूक और संघर्षशील जनता को समर्पित किया है। संसद रत्न पुरस्कार समारोह जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर रांची में जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9031110120 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
2: बिजली विभाग के जन समस्या निवारण केंद्र आज कुसई कॉलोनी रांची में हम लोग शुभारंभ किए। ये राज्य स्तर के हम लोग इसको तैयारी किए हैं, आज से ये संचालन शुरू हो गया है। इसमें हमारे बिजली विभाग के संबंधित कितने भी आपका सुझाव है, समस्या है, जो भी आपके जानकारी आप दे सकते हैं, उसका तुरंत जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर हल कर सकते हैं।
0: टाटा स्टील वित्तीय वर्ष 2026-27 तक डिजिटलीकरण और AI आधारित कार्य कुशलता के जरिए 7100 करोड़ रुपए की लागत कम करेगी। कंपनी के MD व CEO TV नरेंद्रन ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और ऑटो सेक्टर की मजबूती से मांग बेहतर बनी हुई है। कंपनी गैल्वेनाइज्ड पैकेजिंग, ट्यूब और वायर जैसे डाउनस्ट्रीम व वैल्यू एडेड स्टील उत्पादों में विस्तार कर रही है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भू माफियाओं के अवैध कब्जे की शिकायतों पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को जमीन दलालों पर कानूनी कार्रवाई करने और सोना हाथों निवासी प्रकाश कुमार महतो को जमीन के पंजी 2 में सुधार नहीं होने की शिकायत पर जल्द निष्पादन का निर्देश दिया है। खलारी के एनके क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CISF ने KDH और डकरा इलाके में विशेष अभियान चलाकर लगभग 3 टन अवैध कोयला जब्त किया है। सीआईएसएफ अधिकारियों ने कहा कि कोयला चोरी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ उत्पादन व्यवस्था के लिए भी खतरा है, इसलिए तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र से पुलिस एक युवक और युवती का शव बरामद किया है। खूंटी के डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि दोनों युवक युवती छौ नृत्य देखने गए थे और देर रात से लापता थे।
3: विशु पाहन और सोमी मुंडू जो कि जीवरी के रहने वाले हैं, अन्य लोगों के साथ छौ नृत्य देखने गए थे रात में। सुबह सूचना मिला कि ये दोनों घर नहीं आए हैं, गायब हैं। खोजबीन के उपरांत मेला से कुछ दूरी पर जंगल झाड़ी में दोनों का लाश बरामद हुआ। दोनों का उम्र करीब 17-18 साल है और इन लोगों के सिर और गर्दन में धारदार हथियार से हमला किया गया। धारदार हथियार का निशान है मार करने का।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 335 अंक की वृद्धि के साथ 75,657 जबकि निफ्टी 111 अंक बढ़कर 23,762 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपए प्रति किलो है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरिंग भी शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य के खेल प्रेमियों और हॉकी खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा। कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: काम करने नहीं चाहिए भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे। क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खो खो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए। बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के डेढ़ पगिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री है वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।
5: मन के सच्चे

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे, पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे, दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होते हैं, और कहते हैं कि माँ का माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है, स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है, पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी, कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी, हाँ वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी, अरे भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते, इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था, मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को, लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी कौशलता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था, पड़ोस की गुलाटी अंकल के हाथे में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था, अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे, अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए, और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया, कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला, भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि
चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी, चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है, एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है, जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में, किसी की फूलों जैसी हजी किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है, बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है, इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भूखता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे, उन पर पत्थर मारते थे, फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ

बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवीएस चलाई, लेकिन मेरे दो छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहां 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब बारूद सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था। सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध बढ़ दुर्गंध बढ़ जाती थी। वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी। कोई बात नहीं, हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे और ₹50 बहुत बड़ी चीज होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौढ़ावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नकसीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गईं, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हैं, हम दो सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया और स्कूल की टीचर को भी बता दिया और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशोता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुन्नी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता 7वीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में, हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया, बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए, ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं, बताइएगा इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर। और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

0: हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

विदेश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिस कर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
4: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070

0: तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
4: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
5: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
4: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
6: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
7: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही

0: हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते
1: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
7: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम।

0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। हजारीबाग में केंद्रीय सड़क निधि योजना से 107 करोड़ की लागत से बनने वाली 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का शिलान्यास हो गया है। भारत माता चौक से सिंदूर बाईपास तक इस सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है।
1: ये लगभग 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है, पूरा हजारीबाग इसी से कनेक्ट होता है। यहाँ से लेकर के नगवा तक में तो जितना बाईपास हुआ है, इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक का जो कनेक्टिविटी है अभी किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को काफी रिलीफ होगा।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मंत्री ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने रिम्स 2 और नए मेडिकल कॉलेजों की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी। राहुल गांधी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए जनता के बीच सक्रिय रहने की सलाह दी। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने के मामले को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। राज्यपाल ने मामले को संवेदनशील बताते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां में 30 और 31 मई को भाजपा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। जिलाध्यक्ष हरेकृष्ण प्रधान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर मार्गदर्शन लिया और उन्हें आमंत्रित किया। इस शिविर में 150 कार्यकर्ता पार्टी इतिहास, सोशल मीडिया और AI की तकनीक सीखेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला में जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हुआ है। उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 25 मई तक जिले के 616 जनजातीय बहुल गांवों में लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव जो 19 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, तो हमारे जिले के 616 ग्राम जो जनजातीय बहुल ग्राम्स है, जनभागीदारी के माध्यम से जनजागरूकता का अभियान चलाया जाएगा और उन ग्रामों में जो पूर्व के कार्यक्रम के तहत डीए जगुआ जनमान कार्यक्रम के तहत इस एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इसमें प्रयास रहेगा कि उनको विभिन्न इंटरवेंशन में सैचुरेशन मोड पर लाया जा सके।
0: बोकारो में बढ़ती बाइक चोरी के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। BSCT थाना पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। DSP आलोक रंजन ने बताया कि आरोपियों पर 3 अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि ये आरोपी झाड़ियों में छिपकर अपराध कर रहे थे। इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम और 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
3: कर्माटांड थाना अंतर्गत रत्नोडी पहलिया टोला के पास से वहां से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उसी क्रम में एक और सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग उसको सिम प्रोवाइड करने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए हैं। इस कल की गिरफ्तारी में कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 2 केस इसमें दर्ज किया गया। के पास से जो कुल मोबाइल बरामद हुआ है, उस 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 3 ATM, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल की जब्ती हुई है।
0: झारखंड के युवा निशानेबाज देवासी हेमराम

ने थाईलैंड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जामताड़ा के गरीब परिवार से आने वाली देवासी को इस ऐतिहासिक सफलता पर आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सम्मानित किया। उन्होंने राज्य सरकार से ग्रामीण और गरीब खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। उनके साथ अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान और युवा खिलाड़ी दीपिका सोरेन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे राज्य के लिए गौरवशाली पल बताया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल है ना। और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला जी। है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे।
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी की आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं। है
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और

0: भी अनुभव सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है। जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: उसको कचोटते रहता है,
0: कचोटते रहता है और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि कि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज। तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोपरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर की बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून जोश जो आपका रहता है ना कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है मात्र शक्ति पता नहीं क्या है उसमें क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
2: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
2: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के
0: मुंह से। बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम, मुलाकात हमारी नहीं हुई है लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकती हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी, हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मंझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: तो
0: कहा।
1: जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखिए आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती।

0: इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उस पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो

0: क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: है। तारा होते ना बच्चे,
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था। पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो

0: 99 में मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है, एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
0: और तो गाना सुन ले
1: चलिए।

0: देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है, दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई, अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: मोनाली, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा की

0: को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कॉम्पिटिशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
1: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू संस्कृत अंग्रेजी पढ़ाते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
0: एक गाना सुन के।
1: चलो।

0: यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का
1: नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: समाचारों के साथ मैं कामिनी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े अपने पुराने आदेश में बदलाव की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है। रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वीडन, स्पेन और दावोस दौरों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1,30,000 करोड़ के निवेश और एआई हब बनाने के दावों के बावजूद जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। भाजपा ने इन विदेश यात्राओं के परिणामों पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। चाईबासा एसपी अमित रेणु ने बताया कि केडाबीर गांव के पास तलाशी अभियान के दौरान यह गोलीबारी हुई। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। फिलहाल क्षेत्र में सघन तलाश अभियान जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: थी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हां दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
2: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
2: जी,
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
2: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
2: जी,
1: अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं। तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
2: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग

0: भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक कहते ना गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी, उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
1: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
0: कहां
1: है
0: कहां से कहां ये बात देखिए।
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है। तो क्यों ना हम ये गाना,
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े हैं यहां।

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता था। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
0: इंस्टेंट फूड की तरह
1: बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था
0: जी, इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें।
1: और जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल। हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है
1: जी। कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने, इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे जाना है अपना अहमदाबाद में, एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती थे सब कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं, अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार, और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है?
0: अच्छा।
1: जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है।
1: जी।
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा। हाँ। वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा?
0: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो कानों में
1: दस शुक्रिया
0: हमेशा भूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती थी?
1: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
0: अच्छा।
1: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
0: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
1: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में। जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
0: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती है। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
1: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: जी।
0: और मेजर ब्रेक,

0: जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
1: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते ना टॉप पे रहा काफी दिनों तक, और यहीं नहीं जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
0: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
1: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए,
2: श्रोता भी सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं

0: पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेश जी से।
1: जी श्रोताओ, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओ, वर्षावन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षावन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
1: अधिकांश वर्षावन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: आहा, तो वो जामुन का

0: वेलकम।
1: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जो जो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
2: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ। रुको रुको रुको, अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
7: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
8: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
7: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
7: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
7: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
2: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
10: गौरमा,
11: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
10: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
11: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
10: गौरमा,
11: हाँ,
10: पहाड़ की ओर।

0: से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ गौरामा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है बहनों। चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
0: किसी भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
4: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
5: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान।
5: मिट्टी पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो?
9: मेरा मुंह के ताक रहे हो? अरे शुरू मारो
8: पेड़। अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चढ़ जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: सुनो, आगे बढ़ो।
8: अरे कहाँ से?
9: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
8: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
0: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
8: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
9: तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
9: ठीक है, तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।

0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: श्रोता भी सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के होटवार जेल में बंद महिला कैदी के यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। झालसा की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर जस्टिस एसएन प्रसाद ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी जांच टीम तुरंत बरसामुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने लोकभवन में शिष्टाचार

0: भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। बोकारो स्थित दामोदर नदी के बरवा घाट में आज नहाने गए दो स्कूली छात्र डूब गए। एलएच आजाद नगर के रहने वाले तीन छात्र स्कूटी से नदी पहुंचे थे। गोताखोरों की मदद से छात्र विष्णु का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि लापता छात्र शनि की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह अपराधी लोगों को फर्जी लिंक भेजकर ठगी करता था। इसके पास से दो मोबाइल और दो सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। राज्य में अगले सात दिनों तक मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर गोल शॉटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। सांसद ने टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ाते हुए 2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:02 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के अलका बिंदने से जोहार प्रणाम। और आज अति हमारे साथ है प्रशांत भाई, तो तोरा भी जोहार प्रणाम।
1: जोहार जोहार अलका बहन, और कार्यक्रम सुनहार सब किसान भाई बहन के भी हमार देने से जोहार, और सब गोटे के कार्यक्रम में स्वागत हो किसान भाई बहन।
0: देख
1: तो देखा कि हमरी के अवधर से ये महीना चले थे, मई के महीना है, और मई के महीना में हम इनके बहुत तरह के काम हुए है, बहुत तरह के है से हम योजना बना के चले पर है। लेकिन अधर जो हम बात करबे वो बात है मधुमक्खी पालन के बारे में। तो मधुमक्खी पालन के बारे में बात करे से पहले सुनल जाए जरूरी संदेश।
0: जरूर।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो अब हम ये बात करवे की मधुमक्खी आजकल बहुत बी कीपिंग भी कहो हथीन।
4: बिल्कुल।
3: तो ये है ने प्रशांत भाई, खेती के साथ करे वाला बहुत बेस व्यवसाय है, बहुत अच्छा व्यवसाय है, जेकर में तू कहला कि बहुत कम लागत में अच्छा कमाई करल जा है।
4: बिल्कुल।
3: और मधुमक्खी जैसे पालन करके खाली मधु के तरफ फायदा ना हो लगल हो, मधुमक्खी के मतलब जो करे था तो कैसे मधु के साथे साथ मोम भी हो गलो, पराग भी हो गलो और रॉयल जेली ये सब भी उत्पाद मिले है। और साथ में जहाँ पर भी तो मधुमक्खी पालन हुए थो ओकर आस पास जे तू फसल लगे ले हा। जैसे कि परागकण बढ़े से कहो तो फसल के पैदावार भी बढ़तो और तो फसल अच्छा हो तो।
4: बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा चीज है कि भाई मधुमक्खी जो पालन है एक तरह से हम इनके मित्र कीट के पालन करे के बारे में
3: बात
4: है। मधुमक्खी है हम इनके लिए मित्र कीट है, अगर मित्र कीट के मार देवल जाए तो हम इनके उत्पादन अपने आप से घट जितो। कहे कि यही मधुमक्खी जब रो थी जब परागन के एक दूसर फूल के पास ले जाती तो फूल में ऐसे फल लगे की क्षमता वृद्धि हो जाए, यानी कि ऐसे एक तरह से एक तरह कहल जाए कि ई फूल से दूसरा फूल के मिलावे के सब काम कर रही थी, पराग के मिलावे के काम करो थी, जेकर से हम इनके उत्पादन ऐसे बढ़ो है। तो ई खतील एक लिए हम इनके लिए बहुत बढ़िया एक साथी हथी, लेकिन के हम इनके हर संभव प्रयास करके चाहे कि बिना दवाई बीरो के रखल जाए और बढ़िया से इनका ऐसे आवास देवल जाए। तो ई अगर आवास एक दे देवल जाए तो हम इनके दो तरह के फायदा हो, तो एक तो पैदावार में फायदा हो तो दूसरे में हम इनके मधु जो है से निशुल्क मिलना शुरू हो जाए।
3: बिल्कुल। और अगर मधुमक्खी पालन के व्यवसाय करना शुरू करो चाहो थी तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज के तू व्यवसाय या काम करना शुरू करे था तो अगर वास्ते प्रशिक्षण लेला, यानी ओकर में तू जानकारी लेला, प्रशिक्षण लेला और ओकर वास्ते जरूरत हो तो तोरा मधुमक्खी पालन वास्ते कुछ सामान के जैसे कि हो गलो लकड़ी के बॉक्स हो गलो, मधुमक्खी के कॉलोनी हो गलो और सुरक्षित स्थान हो गलो, ये सब दो तीन बात के हमरा ख्याल रखना चाहिए। और जिस जगह में सरसों लगल हो, लीची हो, सूरजमुखी हो, जंगल हो या बाग बगीचा वाला जो इलाका हो वो तो सबसे अच्छा हुए है मधुमक्खी पालन वास्ते।
4: देखा अलका बहिन, हम इनके झारखंड प्रदेश से है, पूरा ऐसे जंगल से ऐसे घिरल है चारों बगल से, और दूसर में है कि हम इनके खेती बाड़ी भी ऐसे बढ़िया तरीके से हो रहा है, बाग बगीचा भी बहुत अच्छा है। अब देखा कि लीची के समय हो, आम के समय हलो, जितना जिसमें मंजर लगो है आम लीची के मंजर, इस सब के एक तरह से खाद पदार्थ मिलना शुरू हो जाए। ओकर बाद है हम इनके करंज के फूल आवो है, महुआ के समय रोहो है, और तोरा है से जखनी परास के फूल के समय रोहो है, और तोरा साल के फूल के समय रोहो है, तो उस समय इस सब के भोजन प्राकृतिक भोजन है से मिले तो रोह है, और इस समझ ला कि एक नंबर के मधु सब तैयार करो थी।
3: बिल्कुल।
4: तो अगर देख ला कि अगर इस समय अगर ये सब चीज उपलब्ध न है मधुमक्खी के लिए तो पर भी तो पालन करना बहुत जरूरी है।
3: जरूरी है।
4: तो ई खतील है ई सब के लिए एक कृत्रिम भोजन भी हम इन दे सको ये, जगरा हम इन चीनी के घोल अगर बना करके मधुमक्खी के आसपास रख देवल जाए तो चीनी के घोल पी करके वो सब ऐसे अपन ऐसे जीविकोपार्जन कर सका थी, वो अपन आपके बचाव सको थी।
3: बिल्कुल।
4: और दूसर बात हो गए कि मधुमक्खी के तोरा अगर सुरक्षित रखना हो तो हर जगह ऐसे जगह जगह बदले पड़तो, कि जहां तोरा ज्यादा पेड़ पौधा है, जहां पर ज्यादा फूल के संभावना है, वैसन जगह पर रखे से उस सब ऐसे अपन दिनचर्या काटते रहतो तोरा ऐसे समय पर मधु मिलते रहतो।
3: बिल्कुल। और सरकार भी जो है से मधुमक्खी पालन के बढ़ावा देते है, जैसे भारत सरकार की योजना है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ई योजना के अंदर में किसान के प्रशिक्षण भी दिया जाए, उपकरण भी दिया जाए, सब्सिडी के भी लाभ दिया जाए, जेकर उद्देश्य कहला कि हर योजना के एक उद्देश्य रहे है किस तरीका से लाभ पहुंचावे। एकर में है कि शहद के मधु के उत्पादन बढ़ाना और किसान भाई बहन के आय बढ़ाना।
4: बिल्कुल, और देखा कि सबसे बड़ा चीज हो कि एकर में है से हमरिन के सरकार देने से जो सब्सिडी देवल जा है वो है से लगभग 60-70% तक सब्सिडी रहो है। तोरा 20-30% तोरा पूंजी लगवे के कर में है, बाकी सरकार देने से सब सामान उपलब्ध हो जाए, पूंजी भी मिल जाए।
3: तो बस एक काम करे वास्ते अपन में फैसला करना,
4: लगन चाहिए
3: और कदम आगे बढ़ाना।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहबन किसान भाई बहन के कि देखा मधुमक्खी के पालन जहाँ कर रहा है वहाँ ऐसे प्राकृतिक रूप से अपने आप ऐसे फसल के पैदावार ज्यादा हो, तो ये भी दिमाग में सोच करके मधुमक्खी पालन करल जाए। भले तू मधु के लेल तू मधुमक्खी पालन न कर रहा है, लेकिन अपन फसल के उत्पादन के बढ़ावे खातिर अगर मधुमक्खी पालन करवा तो तुहर से एकर से दुगुना है से उत्पादन बढ़ सकल हो, एकर संभावना बहुत ज्यादा है। तो ई खातिर है कि किसान भाई बहन के कहबन कि मधुमक्खी पालन के अगर जगह है वैसन तो बहुत कम पूंजी में हुआ है, जरूर करा, एकर से दोहरा लाभ मिलतो।
3: और हम बात करबे कल है 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस।
4: हाँ।
3: जेकर मतलब मधुमक्खी दिवस मनावल जा है, और मधुमक्खी दिवस मनावे के कहला के उद्देश्य जे है।
4: हाँ।
3: कि लोग के मधुमक्खी और परागकण करे वाला जो जीव है ओकरा महत्व के प्रति जागरूक,
4: बिल्कुल ओकरा सुरक्षित, ओकर सुरक्षा के प्रति आदमी के जागरूक करना है। एकर वास्ते है से 20 मई के है से मधुमक्खी मधुपालन यानी कि मधु दिवस मनावल जाए।
3: हाँ, कहे कि मधुमक्खी सिर्फ मधु न दे है।
4: हाँ।
3: साथे साथ खेती में तो फसल उत्पादन में भी बढ़ावा दे, तो पर्यावरण संतुलन में भी अच्छा भूमिका।
4: बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक है किसान भाई बहन जरूर बात के है से समझ रहे थी, कहे कि अब धर देखा कि बहुत सा किसान भाई बहन मधुमक्खी पालन करके अपन आय बढ़ा रहा थी और अपन है से खेती बाड़ी में है से उत्पादन के क्षमता भी बढ़ा रहा थी। अब एकर संगे संगे हम इन आगे भी कार्यक्रम में बढ़वे, अब धर किसान भाई बहन के लिए चलो ये जरूरी संदेश देने।
3: जरूर,
5: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: कुतला बोल रहे
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
6: परंतु सब ही डाले
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच
5: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल स्मेल नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आते जल्दी।

0: तो देखा अभी हमने जरूरी संदेश सुन लिया और एक पहले बात करे थलिए मधुमक्खी पालन के बारे में। अब हमने देखा खेती के एक सबसे बड़ा आज के जरूरी है हमने के जो माटी है ओकर अच्छा स्वास्थ्य रखना, कहे कि बहुत ज्यादा कीटनाशक दवाई के उपयोग करल से जमीन के जो माटी के उर्वरा शक्ति है बहुत कम हुए लगल है, अब बहुत खराब हुए लगल है। तो एक में आज हमने बात करबे कि केचुआ खाद जो उत्पादन है यानी वर्मी कंपोस्ट हमने कैसे बनेबे और किस तरीका से हमने के जमीन वास्ते बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल, सबसे पहला चीज है कि अलका बहिन की वर्मी कंपोस्ट है हमने की माटी के लिए एक वरदान की तरह काम करो ये खाद। सबसे पहला चीज हो कि जे हम इन रासायनिक खाद के जे अंधाधुंध प्रयोग करे थे अपन लाभ खतीले अपन उपज खतीले ओकर ऐसे माटी के जे स्वास्थ्य है बिल्कुल खराब हो गए है। माटी के जल धारण क्षमता ऐसे बहुत कम हो गए है, माटी ऐसे हार्ड हो गए है, कड़ा हो गए है। वही माटी के स्वास्थ्य है से फिर से लौटावे खातिर है से केचुआ खाद एक वरदान की तरह काम कर रहा है। केचुआ खाद के बनाना बड़ी ही आसान है और बहुत है पैसा के बात एकर में न करल जाए, निशुल्क बनो है केचुआ खाद। देखा हर किसान भाई बहन के घर में गोरु डांगर रहो है तो गोबर के कोई कमी न रहे। गोबर अगर है से 20-25 दिन के हम इनके जमा हो गलो संगर गलो गोबर और वो गोबर संगार के अपन जगह रख ले ही है, तो हम इनके सबसे पहले खाद के तैयार करे खातिर एक टंकी बनावे पड़ो है, लगभग ऐसे 1.5 फीट ऊंचा 5 इंच के चारों बगल से ईटा के देवाल घेर दा और अपन जरूरी के हिसाब से अपन जगह के हिसाब से तू लंबाई रखा
0: चौड़ाई रखा
1: और चौड़ाई है से कम है 2 फीट रहे। उतना में तू है से जब टंकी तैयार कर दे 1.5 फीट ऊंचा तो कर में सबसे पहला चीज है कि हम इनके गोबर उपलब्ध है,
0: सूखा पत्ता,
1: रसोई में बहुत तरह के हम इनके सब्जी के काटन छाटन रहो है, ओकर अलावे खेत में बहुत तरह के है से खरपतवार के अवशेष रहो है, तो ई सब के एक जगह जमा कर दिए लान के रखिए। और हम इनके देखा बारी झारी या खेत में हम इनके पुआर रहबे करो हो तो पुआर के भी है से कर में दरकार लगो है। जब टंकी हम इनके बन के तैयार हो जाए तो हम इनके जो पत्ता या पुआर कह दिया कम से कम है से हम इनकी टंकी के नीचे पहला परत में 4 इंच तक ले हम इनके बिछा देवे के लगे। सबसे पहले 4 इंच में पत्ता बिछावा या पराली बिछावा, बिछावे के बाद हम इनके जो ताजा गोबर है यानी कि 20-25 दिन पुरान गोबर जेकर में गर्माहट ना है जेकर में गैस ना है, कहे कि अगर ना ताजा गोबर रहलो बिल्कुल तो ओकर में गर्माहट भी रहतो गैस रहतो केचुआ डालवा केचुआ मर जितो। इसलिए देखल जाए सावधानी बरतल जाए कि गोबर बिल्कुल ठंडा रहे 20-25 दिन के पुरान रहे तो ओकर गोबर

0: रहे से अपन जे खर पतवार निकललो से और अपन रसोई के जे काटन छाटन सब्जी के से ओकरा मिला करके बढ़िया से ओकर में ऊपर में पूरा भर देवे के चाहिए और 4-5 इंच ऊपर जगह छोड़ देवे के चाहिए उतना, ताकि ऐसे जब ऐसे केचुआ ऊपर में जब छोड़ल जाए उस जगह केचुआ आसानी से घुस जाए और वहां पर ही हम इनके ऊपर छाहे, जैसे कि धीरे धीरे ऐसे फूल को है तो ऊपर छाहे हम इनके खाद गिरे ना लगे, ये खातिर 4-5-6 इंच छोड़ल जाए ऊपर। तो ओकरा बाद है से हम इनके छोड़े के बाद केचुआ ओकर में कम से कम ऐसे 1 क्विंटल अगर गोबर तू देभा ने तो ओकर में कम से कम ऐसे 1 kg केचुआ ओकर में छोड़े के लगे बेस किस्म के केचुआ। तो एक बार खाद तैयार करे में कम से कम 50 से 60 दिन लग जाए। टंकी ऐसा जगह बनवल जाए अलका बहिन जहां पर छाया रहे, सीधा धूप ओकर पर न पड़े। ओकर बाद है से हम इनके देखा कि गर्मी के समय रहो तो अगर गर्माहट ज्यादा हो तो 2 से 3 दिन में तो रह से ओकर में पटवन भी करना हो हल्का हल्का, ऊपर फुहारा दे के पानी देना हो,
1: मतलब पानी ओकर में जमा ना हो देना।
0: हाँ, अगर ज्यादा ऊपर से गर्माहट पड़ रहा है तो हम इनके ऊपर में पुआर दे देवे के चाहिए या फिर जूट के बोरा ताकि नीचे ठंडा बनल रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो जब हम इन प्रक्रिया से गुजर जाइए तो ओकर बाद है से 2 से 3 दिन तक 4 दिन तक बीच बीच में पानी हम इनके हल्का हल्का छिट्टा मारते रहना ओकर में और छोड़ देना हो 50 से 60 दिन तक ले। ओकर बाद देखबा कि चाहपत्ती नियर
1: काला भुरभुरा एकदम गंध रहित, मतलब
0: ओकर में कोई गंध ना दे।
1: बिल्कुल।
0: ओकर से जब गोबरवा के ऊपर से देखबा चारों बगल हो गलो लग तो चारों बगल संगर गलो, तो ओकरा जब उठा के हटा करके ऊ चाहपतिया नियर जो हो ओकरा ते जे बालू चाले वाला जे रोहन चलनी ऊ चलनी हम लान के चाल करके बढ़िया से तू ओकरा पैक करके धर सकल,
1: मतलब हो गलो तोरी वर्मी कंपोस्ट तैयार।
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: और ऊ खाद के तैयार करला के बाद समझ ला कि जे गोबर के खाद तू देहा ओकर से कई गुना ताकतवर ई खाद हो जाए और माटी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो जाए।
1: बिल्कुल। और केचुआ जे खाद है उत्पादन जे केचुआ खाद जे बनावे था एकर में तोरा लागत बहुत कम लगे थो।
0: बिल्कुल।
1: कम लागत में तोरा रोजगार अच्छा मिले थो।
0: हाँ।
1: और जेकर से तोरा अपन खेती बाड़ी वास्ते अच्छा तोरा मतलब खाद भी मिल जाए थो।
0: हाँ।
1: और अगर एकर बेचे था तो तोरा आय भी हो जाए थो।
0: हाँ।
1: तो जेकर से किसान भाई बहन अपन लाभ कमा सको।
0: एकर में सावधानी बरते के लगे किसान भाई बहन कि जखनी केचुआ खाद तैयार हो जाए तब देख ला कि 2 से 3 दिन तक ओकरा में पानी नहीं देना हो तोरा, ताकि केचुआ है से पानी नमी ढूंढते ढूंढते एकदम भीतर चल जाए और ऊपर से तुम अपन केचुआ खाद निकाल ले और फिर वही केचुआ जो बनल है ओकरे में थू ताजा गोबर फिर से डाल सके है ओकर में,
1: मतलब इस प्रकार से चलते रह तो।
0: हाँ, और तू खाद अपन निकालते रह। तो ई तो भेगले केचुआ खाद तैयार करे के विधि भाई, और अब ऐसे किसान भाई बहन के ले चलो ये जानकारी देने।
1: बिल्कुल। आज ये हमने के एक युवा किसान के अनुभव बतेबे।
0: हाँ।
1: कि वो बाहर से आके मतलब यहाँ पर खेती करे के अपन अनुभव बते थी।
0: हाँ।
1: और ये थे युवा किसान के अनुभव, नाम हन तरुण यादव जो जुलजुल पहाड़ सीतागढ़ की है, लीज पर जमीन लेके खेती करे थे। तो सुनिये इनकर से जानकारी भरल बातचीत और इनकर से बातचीत कर ले थी
0: अलका कुमारी,
1: तो सुनल जाए।
2: नमस्कार किसान भाई बहन, समय समय पर हम आपको ऐसे किसान भाई बंधु से मिलाते हैं जो अपने अनुभव को बताते हैं, जिससे हम लोग काफी लाभान्वित होते हैं खेती के मामले में या कह लीजिए बहुत सारे फसल के मामले में। तो आज ऐसे ही हम एक ऐसे किसान बंधु से मिल रहे हैं जो खेती करने के लिए कह लीजिए बहुत ही वृहद स्तर पर कृषि कार्य कर रहे हैं, फसल लगाए हुए हैं। तो ये सारी बातें इन्हीं के द्वारा हम जानेंगे कि ये क्या लगाए हैं, कितने जमीन में लगाए हैं और इसकी देखभाल कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत है।
3: शुक्रिया।
2: तो जानते हैं सबसे पहले इनका परिचय, आपका नाम क्या हुआ?
3: मेरा नाम तरुण यादव।
2: तरुण यादव, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: मैं ग्राम जुलजुल पोसीतागढ़, हम लोग का सखिया पंचायत है हजारीबाग सदर ब्लॉक।
2: तो आप यहाँ के रहने वाले, आप तो बहुत युवा किसान हैं, तो आपको खेती कृषि कार्य से कैसे लगा हुआ कि हमें कृषि कार्य करना है?
3: हम महाराष्ट्र में रहते थे। हाँ? मेरा भाई है।
2: अच्छा।
3: ये पढ़ता था और आर्मी तैयारी करता था, ये छोटा मोटा खेती करता था। फिर हम भी लॉकडाउन से 2020 से हम खेती चालू कर दिए भाई के साथ।
2: अच्छा, यानी उसके पहले आप महाराष्ट्र में रहते थे और जब लॉकडाउन हुआ तो उस अवधि में आप अपने गांव की ओर आए और उसके बाद खेती का काम करना शुरू किए। अच्छा, तो जो ये कितनी जमीन में खेती कर रहे हैं, ये तो देखने में काफी बड़ा लग रहा है।
3: लगभग 25 एकड़।

0: पढ़ाई में
1: 25 एकड़ है। अच्छा, तो 25 एकड़ में आप यहाँ पर आप
0: हम लोग दो भाई,
1: दोनों
0: मनोज यादव है,
1: एक मनोज यादव
0: और मेरा छोटा भाई।
1: अच्छा, छोटा भाई है, तो आप दोनों मिलकर इसको खेती कर रहे हैं। तो अभी क्या लगाए हैं?
0: अभी बैंगन है और खीरा है।
1: तो बैंगन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी लें कि बैंगन का लगाने के लिए जैसे कोई किसान है चाह रहे हैं कि कैसे मतलब खेती किया जाए, किस तरीका से उनको मतलब बैंगन लगाए कि अच्छा बैंगन हो, उसमें किसी तरीका का बीमारी ना हो, लाभ हो, तो उसमें सबसे पहले क्या ध्यान क्या रखना होता है?
0: इधर काफी बैंगन मार जाता है, ये ग्राफ्टेड बैंगन है, ये हम लोग छत्तीसगढ़ से लाते हैं।
1: अच्छा, तो सबसे पहले अगर जमीन तैयार करने की बातें कहा जाए कि बैंगन लगाना है तो उसके लिए हम जमीन तैयार करेंगे तो किस तरीका से करेंगे?
0: अपना जोताई अच्छा से करते हैं और बाकी जितना गोबर हो सकता है उतना देते हैं।
1: अच्छा, कितने बार जोताई करते हैं?
0: लगभग 6-7 बार जोताई करते हैं, उसके बाद बेड बनाते हैं।
1: अच्छा, तो जुताई जो करते हैं वो मशीन से करते हैं?
0: ट्रैक्टर
1: मशीन से करते हैं ना, तो वो तो भी आपके पास अपना ही होगा?
0: अभी नहीं।
1: अच्छा ठीक, तो 6-7 बार जुताई करते हैं, और जुताई के बाद अगर जो खाद देने की बारी आती है तो कितने बार?
0: गोबर है, उसके बाद हल्का जो डीएपी पड़ता है अपना।
1: अच्छा,
0: डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट।
1: कितनी बार गोबर का खाद देते होंगे?
0: साल में एक ही वही बेड होता है, जनवरी में तैयार होता है, दिसंबर में इसको प्लास्टिक को काट मल्चिंग और टपक सिंचाई।
1: अच्छा हाँ, ये तो हम देख रहे हैं कि मल्चिंग और आपका टपक सिंचाई है, तो बैंगन के लिए भी इसी को?
0: जी जी।
1: अच्छा, तो ये काफी जैसे गर्मी पड़ रहा है तो इसमें आप लोग को
0: अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है गर्मी, क्योंकि इस बार काफी गर्मी, लेकिन अभी मौसम ही हो गया। इससे होता है कि पानी का बचत होता है, घास पतवार का बचत होता है, लेबर का बचत होता है।
1: अच्छा, ये सारी चीज का। तो अगर जो खीरा लगाए हैं तो उस मतलब पहले तो आप जमीन तैयार कर लिए बहुत अच्छे से, मतलब 6-7 बार जुताई करके उसका मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं?
0: उसके बाद बेड बनाते हैं, उसके ऊपर हल्का जो अपना डीएपी।
1: अच्छा, जब बेड बनाने के बाद हल्का डीएपी,
0: बेसल डोज उसको बोलते हैं,
1: बेसल डोज
0: वो देते हैं, उसके वही मल्चिंग को प्लास्टिक को ढकते हैं।
1: अच्छा,
0: उसके बाद रोपाई चालू होता है।
1: तो जैसे ये जो मल्चिंग है इसको ये खुद के पैसे से लगाते
0: हैं? जी जी,
1: अपने पैसे
0: जी। ये ड्रिप इरिगेशन में गवर्नमेंट का सब्सिडी है 90%, बाकी ये मल्चिंग जो है
1: वो खुद के पैसे। उसमें कितना खर्च हो जाता होगा आपका?
0: मल्चिंग में अगर 8 करोड़ लगभग होता है, अभी तो जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से प्लास्टिक का रेट बढ़ गया है।
1: अच्छा,
0: तो अभी तो 2000 रुपए एक रोल आता है।
1: तो आपको 2000 रुपए का लगा होगा
0: जी
1: ना?
0: तो एक एकड़ में 16000 रुपए,
1: एक एकड़ में 16000 का खर्च,
0: लेबर उस सब अलग है,
1: लेबर कॉस्ट अलग लगता है ना। अच्छा, और जैसे कि जो आप बैगन मान लीजिए कि आप जमीन तैयार कर लिए, प्लास्टिक बिछा दिए, तो सबसे बड़ी बात होती है एक बीज की, क्योंकि उसी पे तो टिका हुआ रहता है फसल, मतलब फसल का उत्पादन। तो कौन सा लगाते हैं?
0: अच्छा बीज हम लोग येनार का 212,
1: ये कहाँ से मिलता है?
0: ये कहीं भी कोई भी दुकान में, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ में वहाँ से ग्राफ्टेड का ऑर्डर दिए
1: तो वहाँ से आप मंगवाते हैं। उसमें मतलब किसी तरीका का कोई डर नहीं रहता है बीमारी वगैरह?
0: डर थोड़ा सा सहनशीलता रहता है उसमें।
1: अच्छा,
0: लोकल अगर दाना सीधा बुआ कीजिए नॉर्मल तो मरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
1: अच्छा, तो जो छत्तीसगढ़ से ग्राफ्टेड मंगवाते हैं वो आपको ठीक लगता है? क्योंकि इतने सालों से खेती कर रहे हैं तो अभी तक आपका अनुभव
0: उसका बहुत ज्यादा है,
1: कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन उसका उत्पादन भी तो उसके अनुसार हो जाता
0: है। 10 रुपया पड़ जाता है
1: एक पौधा का, 10 रुपया। उसमें फसल कितना होता होगा?
0: उसमें फसल काफी हो जाता है, आप जैसा मेंटेनेंस कीजिए उसमें ऐसा होता है।
1: अच्छा, तो वो छत्तीसगढ़ उसके
0: बीच एक साल चलता है बैंगन, आपको
1: एक साल लगा एक
0: बार? जनवरी फरवरी लगाया तो नवंबर दिसंबर तक
1: वो कितना बार भी उत्पादन आपका देता रहेगा, देता रहेगा, और उसका जो फसल होता है वो भी ठीक रहता है,
0: ठीक रहता है।
1: तो सबसे पहले हम खीरा के बारे में ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैंगन के बारे में बातें करेंगे। तो जैसे कि खीरा जब आप लगा दिए और वो छत्तीसगढ़ से लाए तो उसमें फिर कुछ
0: खीरा लोकल है?
1: खीरा लोकल लगाते हैं। बैंगन आप?
0: बैंगन टमाटर शिमला मिर्च ये सब जो है
1: वो छत्तीसगढ़ से लाते हैं? अच्छा ठीक है। तो इसमें जैसे लगाने के बाद जो पौधा तैयार होता है उसमें कुछ देखभाल की जरूरत होती है?
0: जी, अभी बारिश हो गया तो फंगिसाइड या तो कभी जैसा भी रस चूसक होते हैं कीड़े मकोड़े, वो लोग के टाइम टाइम पे दवा वगैरह
1: देना पड़ता है। तो वो देने के लिए कौन सी दवाई का यूज करते हैं?
0: जैसा जो बीमारी रहता है।
1: अच्छा, उसमें बीमारी का पता कैसे चलता है कि ये बीमारी हो रहा है?
0: पौधा में देखते हैं ना, अगर पत्ता से कुड़ने लगे तो रस चूसक लगा रहता है।
1: अच्छा,
0: उसको पत्ता को देखते पलट पलट कर तो उसमें दिखता है।
1: अच्छा, इसको देखभाल करते तब पता चलता है,
0: फल रेडी होने तो उस टाइम पे।
1: अच्छा, यानी एक पत्ता होते समय और एक फल रेडी होते समय बीमारी होने का डर कब कब रहता है?
0: जैसे मौसम अप डाउन होता है ना,
1: अच्छा, या एकदम काफी गर्मी से बारिश हो गई इस बीच में, ऐसे समय में होने होता है डर, तो इस समय या दो ही बीमारी हो सकता है, फल चूसक,
0: फल पत्ता चूसक जो रस चूसक बोलते हैं,
1: अच्छा वो होता है,
0: एसिड या फिर ये सब जो है वो सब होता है। तो जैसा आपको लगे कि कौन सा है, व्हाइट फ्लाई है या थ्रिप्स है, उसके लिए दवा चलता है।
1: अच्छा, तो इसको आप लोग अपने अनुसार दवाई दे देते हैं या कहीं से मतलब किसी मतलब वहाँ से पता करते हैं?
0: तो बहुत ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं,
1: अच्छा
0: सब
1: विशेषज्ञ के द्वारा जानकारी ले लेते हैं। आप कभी ट्रेनिंग भी लिए हैं?
0: ट्रेनिंग नहीं लिए, छत्तीसगढ़ गए हैं। अच्छा, से
1: छत्तीसगढ़ में कहाँ पर मतलब कृषि कार्य जहाँ हो रहा था, या प्रशिक्षण केंद्र गए हैं?
0: प्रशिक्षण केंद्र नहीं गए, वहाँ पे एक नर्सरी है,
1: अच्छा अच्छा,
0: उसका बहुत बड़ा ये है फार्म, वही पे विजिट किए थे।
1: अच्छा,
0: बाकी बात धीरे धीरे अपने से।
1: अच्छा, ये धीरे धीरे हर बार के अनुभव से इस बार ये गड़बड़ हुआ?
0: माता पिता ही किसान है तो।
1: अच्छा, तो जैसे कि एक तो फल होते समय भी अगर बीमारी होता है तो उसका दवाई कर देते हैं, और बैंगन में?
0: बैंगन में भी उसी तरह चलता,
1: बैंगन के लिए भी
0: बैंगन में थोड़ा ज्यादा चलता, बैंगन में बहुत सूट बोरर, फ्रूट बोरर, ये सब जो फल छेदक तना छेदक।
1: अच्छा, उसमें कभी कभी देखा जाता है कि बीमारी, बैंगन बाहर से बड़ा सुंदर अच्छा लगेगा, अंदर में कीड़ा,
0: तो वही अपना फल छेदक जो होता ना,
1: तो वो कैसे पता चलता है आप लोगों को?
0: वो आपको उसका एक शेड्यूल बना लेना पड़ता है बैंगन में, कि आपको 5 से 6 दिन में उसका दवा चलाना है।
1: तो वो कैसे, क्या शेड्यूल, मतलब कब उसकी बीमारी होने से पहले या फिर जब लगाने
0: लगती उसी टाइम से,
1: मतलब फल आ रहा है उसमें बीमारी दिख रहा है या ना दिख रहा है, हमको उसका दवाई करवाना है।
0: बैंगन बहुत ही है, उसमें तुरंत अटैक कर जाता है,
1: उसमें तुरंत अटैक कर जाता है। कौन कौन सी बीमारी ज्यादा अटैक करता है उसमें?
0: सूट बोरर और फ्रूट बोरर, फल छेदक और तना छेदक।
1: अच्छा, तो इसमें क्या पहचान क्या होता है?
0: ये तना छेदक में जो होता है वो डालियां में
1: छेदा छेदा
0: छेदा कर देता है और उसमें अंदर घुस जाते कीड़े।
1: अच्छा,
0: और ये फल छेदक में फल में अटैक करता
1: है। अच्छा, तो फिर इसके लिए दवाई कब कब डाला जा सकता है?
0: एक एक सप्ताह में दवाई पड़ता है उसमें,
1: एक एक सप्ताह में। इसके लिए भी कोई खास दवाई है?
0: बहुत सारे हैं, अगर अच्छा, नाम लीजिएगा बहुत सारे हैं।
1: अच्छा, उन सारी दवाइयों का मतलब जो उस समय सुटेबल लगे उस दवाई का उपयोग,
0: अटक कर रहा है तभी दवा देते, ऐसा नहीं कि आप,
1: हाँ जैसे कि हाँ कि
0: ज्यादा पैसा, कितने महंगे हो गए पेस्टिसाइड केमिकल।
1: अच्छा, तो इसके कारण आप करते हैं। और फिर जब फल आने मतलब बैगन फलने लगा तो उसके बाद क्या करते हैं? मतलब हो गया फल, बैगन का फसल हो गया तो कैसे उसमें तुड़ाई करके बाजार कैसे भेजते हैं?
0: बाजार लोकल बाजार बहुत कम भेजते हैं, बाकी तो, जो अपना व्यापारी बिचौलिया होते हैं
1: तो
0: बंगाल और बिहार ये सब ज्यादा।
1: तो जैसे आपका जो फसल हो रहा है, जो सब्जियां हो रही है, वो लोकल बाजार ना जाके बाहर के बाजार?
0: लोकल भी जाते लेकिन लोकल इतना खपत नहीं है।
1: अच्छा, तो बाहर चला जाता है आपके खेत से ही?
0: ज्यादातर बैंगन बैंगन बंगाल में खपत होता है,
1: बैंगन
0: बिहार में।
1: जैसे अगर आप लोग का जो फसल हुआ, जैसे खीरा हुआ, बैंगन हुआ, तो इसके लिए आप लोग व्यापारी से खुद आप लोग का कॉन्टेक्ट रहता है?
0: बहुत सारे से।
1: अच्छा, तो फिर यहाँ से आके फसल?
0: जी, गाड़ी यहाँ खेत पर आएगी, खेत पर से चल जाएगी।
1: अच्छा ठीक है, तो आप इसमें इतना जैसे इतने सारे जमीन में आप फसल लगा रहे, तो अकेले तो करना संभव नहीं होता होगा?
0: नहीं,
1: तब तो लोगों को रखते होंगे।
0: मेरा स्टाफ भी है, तीन स्टाफ है। अच्छा, दोनों भाई हैं।
1: अच्छा, दोनों सारे परिवार मिलकर लगाते है ना? अच्छा ठीक है। और ये मतलब इस फसल को लगाने में और देखभाल करने में आपको क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है?
0: बहुत सारे, बारिश के टाइम बहुत सारे, मैम ज्यादातर हम लोग का एरिया में अभी हाथी का प्रकोप बहुत है।
1: इस एरिया में हाथी का?
0: बिल्कुल, अभी आप कितना गंदवार तरफ जो मार दिया था अपना पूरा, ये सब हाथी जो ट्रेन कटी हुई सब हाथी के डर से।
1: अच्छा।
0: ये सब सब उजाड़ दिया था हाथी, मेरा दूसरा प्लॉट में भी 2 बार आया हाथी।
1: तो कभी ये जैसे कि फसल बीमा योजना ये सब कभी का आपने लाभ लिया?
0: धान में, इसमें नहीं, धान में लिया,
1: धान में लिया है। और ये किसान क्रेडिट कार्ड होता है? है, तो वो सरकार के द्वारा लाभ मिलता है। जैसे जब आप सही समय पर अपने लोन को चुकता कर दिया तो आपका क्रेडिट बढ़ता जाता है ना?
0: अभी तक लोन तो नहीं लिए,
1: जरूरत नहीं पड़ा है। तो मतलब आपको इतना फसल से ही आय हो जा रहा है कि आपको लोन का जरूरत नहीं है। और जैसे अगर जो मल्चिंग विधि या टपक बूंद विधि से सरकार के द्वारा कुछ लाभ लिए हैं?
0: जी, ये ड्रिप इरिगेशन जो टपक सिंचाई,
1: हाँ हाँ,
0: उसमें 90% सब्सिडी मिली, बाकी जो मल्चिंग और प्लास्टिक वो खुद का।
1: अच्छा, तो ये ड्रिप इरिगेशन से जो आप खेती कर रहे हैं तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, और देख रहे की खर पतवार काफी कम है, तो इससे क्या क्या लाभ होता है?
0: इससे अपना पानी की बचत होती है,
1: पानी
0: जिस तरह गर्मी हम लोग का जड़ कर पानी इधर बहुत कम,
1: हाँ, पानी की कमी
0: पहाड़ी इलाका, तो पानी की बचत होती है खर पतवार।
1: कम हो जाता है, मतलब देखभाल में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। कह लीजिए कि खरपतवार कम है तो देखभाल में एक कुछ परसेंट होता है कि आपको मेहनत की कमी लग जाए।

0: कि फसल का ही बढ़वार ज्यादा अच्छा होता होगा,
1: उस सब चीज के कीड़े मकोड़े भी कम पड़ते हैं।
0: अच्छा, तो इससे भी लाभ होता है। और आगे और कौन कौन सी फसल लगाने की तैयारी है?
1: अभी है और टमाटर है,
0: ये सब भी लगाने के।
1: मटर लास्ट में ठंड के टाइम में।
0: आपने अपने खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत थैंक्स मैम।
0: तो अभी हम लोगों ने सुना युवा किसान के अनुभव तरुण यादव के, और अब समय है आज का बाजार भाव का। तो आज का बाजार भाव है लाल आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो, सफेद आलू 12 से 15 रुपए प्रति किलो, प्याज 15 से 20 रुपया प्रति किलो, और फूल गोभी 30 से 40 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी जो है सो 30 से 40 रुपए प्रति किलो है, और पटल 20 से 30 रुपया बाजार में मिल रहे हैं।
2: भिंडी 20 से 25 रुपए प्रति किलो, नेनुआ 30 से 40 रुपए प्रति किलो, कद्दू 20 से 25 रुपए प्रति किलो, हरा मिर्च 60 से 80 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 30 से 40 रुपए प्रति किलो, और गाजर 20 से 30 रुपए प्रति किलो, बीट 20 से 30 रुपए प्रति किलो बाजार में आई रहल है।
0: और देखा अभी जे हो मूली के दाम, बीन्स के दाम हो 40 से 50 रुपए किलो, मूली 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिले थो, और धनिया पत्ती 60 से 80 रुपए किलो, अदरक 100 से 120 रुपए किलो, खीरा 15 से 20 रुपए किलो, टमाटर 25 से 40 रुपए किलो, और लाल साग और पालक साग दोनों के दाम हो 20 से 25 रुपए प्रति किलो।
2: और आज के मौसम रहले किसान भाई बहन, ज्यादा से ज्यादा तापमान आज के 36 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहले, और काल खूने जे रहे के संभावना हो 38 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा रहतो, और 25 डिग्री सेल्सियस कम से कम, और आज के जे आर्द्रता हो 38% हो, और कल भी मौसम सामान्य रहे के संभावना हो। तो एकरे साथ कार्यक्रम किसानवाणी से आप विदा लेवे बेरा भेगलो, तो हमरा प्रशांत के
0: और अलका के
2: अनुमति दा
0: जोहार।

श्रोता भी सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को प्रशांत की ओर से सप्रेम नमस्कार और सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। ग्रामीण भाई बहन हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में है अलका। अलका आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार प्रशांत जी, और कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुन रहे सभी श्रोताओं को भी अलका की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और अपने इस कार्यक्रम में स्वागत है।
0: अलका, मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में हमारे कृषक भाइयों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कार्य होते हैं जो आगे की कृषि के लाभ को तय करते हैं।
1: बिल्कुल, अभी का समय है कह लीजिए कि हरी सब्जियों का।
0: जी बिल्कुल,
1: जो कहीं लगा हुआ है, कहीं कुछ मतलब जो फल आ रहा है कहीं लगाने की भी तैयारी होगी। मतलब कह लीजिए कि अभी नेनुआ, झींगे, कद्दू, करेला, बोदी, टमाटर, शिमला मिर्ची, मूली, फूलगोभी, ये सब चीज सब्जियों का मौसम चला रहा है।
0: जी बिल्कुल, और ये सब है सो बाजार में आज उपलब्ध है और हमारे किसान भाई के खेतों में भी लहलहा रहे हैं ये फसल। और लहलहाने का कारण है कि उनकी जी तोड़ मेहनत जो वो करते हैं, इतनी तपिश में, इतनी गर्मी में, इतना पानी का किल्लत

0: तो सबसे पहला कार्य होता है कि हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति क्या है, कौन सी फसल के लिए हमारे खेत हैं सो ज्यादा अच्छे कारगर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मिट्टी की जांच करवानी होती है। मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हम अगली फसल को तय कर सकते हैं कि इसमें ये चीज की कमी है या इस चीज की अधिकता है, जिसका हम उपचार करके मिट्टी को स्वस्थ कर लें, ताकि आने वाली जो फसल लगने वाली है इसमें वो फसल हमारा स्वस्थ रहे और पैदावार ज्यादा मिले।
1: बिल्कुल, यानी हमें मिट्टी की जांच की बहुत जरूरत होती है
0: जी,
1: और इसके साथ में जरूरी होती है फसल के लिए खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। यानी अगर हमें फसल उत्पादन भी अच्छे तरीके से करना है तो खाद और उर्वरक प्रबंधन भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि गोबर खाद हम कब दें, ताकि हमारा जो गोबर खाद सही समय पर अगर जमीन में पड़े तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए
0: जी बिल्कुल,
1: और उसमें जल धारण की क्षमता बढ़े। और साथ में एक और है हरी खाद का, कि जो ढेंचा हो गया, सवई हो गया, तो ये सब फसल को अगर हम उगाकर अपने खेत में मिला देते हैं तो इससे भी ज्यादा बेहतर होता है,
0: प्राकृतिक नाइट्रोजन उसमें उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ हमारे उर्वरक हैं जो रासायनिक हैं, जो अपने खेतों में हम जानकारी लेने के बाद हम प्रयोग करते हैं, जैसे मिट्टी जांच करवा लिए और पता चला कि इसमें फास्फोरस की कमी है या बोरॉन की कमी है या पोटास की कमी है या यूरिया की कमी है, तभी ना हम इसका प्रयोग करें। अगर हम अंधाधुंध, अगर हम बिना जानकारी के प्रयोग करते जाते हैं तो हमारी फसल के लिए भी वो लाभदायक नहीं हो पाएगा और हमारे जेब का खर्च भी बढ़ेगा। इसलिए वहां पे है सो किसान भाई ज्यादा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम एक समुचित ढंग से खेती करें और व्यवस्थित हम करें तो सबसे पहला चीज है कि मिट्टी जांच कराएं, उसके बाद जो कमी है बेसी है उसको हमें सुनियंत्रित कर लें अपने एक उर्वरक के जरिए या फिर खाद के जरिए, उसके बाद फसल की बुआई करें तो ज्यादा से ज्यादा हम मुनाफा ले पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक खाद होता है कि आप है सो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो खाद का है सो कम मात्रा में अच्छे तरीके से अपने पौधों तक, उनके जड़ों तक पहुंचा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ आप अगर खेती करते हैं तो कम पानी में आप ज्यादा क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में आप खेती को साकार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी कुछ तरीकों को हमें अपनाना होगा, प्रबंधन करना होगा, तो ही हमारा जो फसल उत्पादन है वो अच्छे से होगा और लाभ मिलेगा।
0: बिल्कुल, अब चलते हैं जरूरी संदेश की तरफ और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत भी।
1: जरूर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

0: जरूरी संदेश और गीत के बाद अब चलते हैं जानकारी की तरफ। और आज जो जानकारी लेके आए हैं वो है सुकर पालन के बारे में। सुकर पालन, हमारे जो सुकर पालन करने वाले लोग हैं उन्हें क्या क्या ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से सुकर पालन करें जिससे ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा फायदा हो। एक सुकर पालन अपनी जो सुकर पालन किए हुए हैं वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो सुनते हैं ये जानकारी भरी बातचीत।
1: बिल्कुल।
2: श्रोताओं, हमारे देश में सुकर पालन का व्यवसाय सदियों पुराना है। अब यह उन लोगों के बीच भी अपनाया जा रहा है जो कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। आज समाज का एक बड़ा तबका सुकर पालन करता है। अगर हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो सुकर पालन का महत्व काफी स्पष्ट हो जाता है, खासकर झारखंड के पठारी क्षेत्रों में जहाँ पर अधिकतर भूमि काफी उबड़ खाबड़ और असिंचित है, जहाँ पूंजी के अभाव में गौपालन लोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ मुर्गी बकरी एवं सुकर पालन का काम कम लागत के कारण अधिक लोकप्रिय है। सुकर पालन व्यवसाय की दृष्टि से लाभकारी है। यदि भोजन को उत्पाद में परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो सुकर पालन सबसे अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बातें करने के लिए उपस्थित है एक युवा सुकर पालक, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनसे इनका परिचय। जी, आपका नाम?
3: पंकज दास।
2: पंकज दास, आप

0: सुकर पालन का कार्य कितने साल से करते आ रहे हैं?
1: 3 साल से।
0: 3 साल से आप सुकर पालन का कार्य करते आ रहे हैं। आप हमें ये बताएं, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है?
1: मैं मैट्रिक पास हूँ।
0: मैट्रिक पास आप किए?
1: जी।
0: तो पंकज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने सुकर पालन को ही व्यवसाय के रूप में क्यों चुना?
1: क्योंकि इसमें कम टाइम में अच्छा हो जाता मुनाफा
0: जी,
1: और इसमें बजट भी थोड़ा कम लगता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और आगे आपसे जानना चाहेंगे, आप ये व्यवसाय को करने से पहले कहीं से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है?
1: हाँ, रांची बिरसा कृषि विद्यालय से।
0: आपने वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया
1: जी।
0: अब आगे हमें बताएं कि आपने सुकर पालन कर रखा है, तो सबसे पहले आती है बात सुकर का आवास स्थल के बारे में। तो सुकरों का आवास स्थल आप कितने क्षेत्र में बनाए हुए हैं?
1: सुकरों का आवास स्थल,
0: रहने का मकान,
1: तो लगभग 5 कट्ठा जमीन में है।
0: हाँ।
1: लेकिन सुकर फार्म कम से कम मोहल्ला, घर मोहल्ला से या घर से दूरी पे होना चाहिए। और खास करके ये ध्यान देना पड़ता है कि आसपास में कम से कम 30 मीटर की दूरी में कोई गाय का फार्म ना हो या मुर्गी का फार्म ना हो।
0: हाँ।
1: ताकि उनका जो कीटाणु होता है या बीमारी होता है, एक तरह से इसमें आ ना जाए। इसके चलते कम से कम 30 मीटर की दूरी होना चाहिए
0: पशुशाला से।
1: जी, पशुशाला से।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, और बहुत ही ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर वहाँ पे भी कोई तरह की बीमारी है तो वहाँ से भी आबो हवा में बह करके यहाँ तक पहुँच सकती है और आपके सुकरों को संक्रमित कर सकती है। इससे बचाव के लिए आप ऐसे लगभग 30 मीटर की दूरी रखने के लिए बोल रहे हैं, और हम लोग का जो आवास स्थल है उससे भी थोड़ी दूरी होना चाहिए ताकि वहाँ से लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो।
1: उसका साइड बनता है 10x10 का रूम होना चाहिए।
0: हाँ।
1: जिसमें बरंडा लेकर के, और अगर उन्हें निकालने का साधन हो, जैसे कि चरा सके, 2-3 घंटा तक धूप में दिखला सके।
0: हाँ।
1: तो फिर वो साइड का जरूरत नहीं पड़ता है बरंडा का।
0: हाँ।
1: केवल 5x6 का रूम बनाना पड़ता है। रूम बनता है उसमें कम से कम जमीन से ऊपर तक 3 फीट प्लास्टर होना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: ताकि उसका
0: ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए होता है कि अगर खुदरा रहेगा तो वो पीठ को रगड़ता है, शरीर, अपने शरीर को रगड़ने के कारण।
0: हाँ।
1: उन्हें जख्म हो सकता है जिससे बैक्टीरिया वगैरह होता है।
0: हाँ।
1: या और कुछ, इसी चलते वो प्लास्टर उसको बचाव करता है, ठंडा गर्मी मौसम के हिसाब से वो बचाव कर देता है।
0: यानी कि ऊपर 3 फीट तक दीवार को है सो प्लास्टर कर देना चाहिए
1: जी।
0: इसके अलावा और क्या?
1: और जमीन होना चाहिए थोड़ा खुदरा टाइप का।
0: हाँ।
1: ताकि वो जब चले तो स्लिप करके गिरे ना।
0: हाँ।
1: और उनका बच्चा लोग भी रहता है तो वो ज्यादा उछलते कूदते हैं तो उससे भी
0: बचाव होता है।
1: बचाव होता है। हाँ।
0: अब हमें बताएं कि साफ सफाई के बारे में, तो साफ सफाई किस प्रकार से रखते हैं उसको?
1: साफ सफाई सबसे पहले तो जमीन जो होता है वो ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए।
0: हाँ।
1: अगर पानी से जब सुबह में वो सुकरों को धोते हैं तो वो पानी एक साइड होकर बह के निकल जाए।
0: हाँ।
1: और उसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए ताकि वो सुकर कहीं अगर बाथरूम वगैरह करे तो वो डायरेक्ट चला जाए, अगर वो जम जाएगा तो वो गंदा।
0: हाँ।
1: रहेगा। और सुबह और शाम दोनों टाइम साफ करना पड़ता है।
0: कहने का मतलब है कि जमीन बिल्कुल ढाल होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि आप पानी वहाँ भी गिरे तो वो पानी बह करके वो मल मूत्र त्याग करे तो वो सब बाहर चला आए
1: जी।
0: आगे हमें ये बताएं कि एक कमरा में
1: जी
0: कितने सुकर रखते हैं आप?
1: एक कमरे में 2 मादी और 1 नर रह सकता है।
0: एक कमरे में 2 मादी और 1 नर। आप किस नस्ल का सुकर पालन कर रहे हैं?
1: वैसे तो झारखंड में लगभग 5 प्रकार के हैं, लेकिन हम TND रखे हुए। TND में ग्रोथ ज्यादा है।
0: हाँ।
1: और उसमें मुनाफा भी ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: इसके चलते TND रखे हुए हैं।
0: तो ये TND नस्ल किस प्रकार का होता है?
1: ये TND नस्ल होता है, लंबा रहेगा देखने में और पूरा गोल मटोल रहता है।
0: हाँ।
1: और इसकी वजन 1 महीने में 9 से 12 kg बढ़ती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ये सुंदरता भी है इसमें और अच्छा मुनाफा है।
0: तो मतलब TND नस्ल है सो यहाँ पे पसंद किया जाता है
1: जी,
0: और आकर्षक भी होता है
1: जी,
0: वृद्धि भी इसकी अधिक होती है
1: जी।
0: इसके अलावा भी TND का कोई खासियत?
1: इसका खासियत ये है कि झारखंड में ये TND जो है तो फलने फूलने में भी बहुत ही अच्छा है और बीमारी वगैरह से बचाव है।
0: हाँ।
1: और TND खास करके झारखंड का ही प्रजाति है।
0: आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं पंकज जी कि आप TND नस्ल का सुकर पालन कर रहे हैं, यहाँ काफी पसंद भी किया जाता है इस नस्ल को, अभी आपके फार्म में
1: जी
0: कितने सुकर हैं?
1: हमारे फार्म में अभी 34 शुक्र हैं।

0: 34
1: जी
0: उनमें से भी मतलब कि कितने नर हैं, कितने मादा हैं, कितने बच्चे हैं?
1: मादा हमारे पास है 12,
0: 12 मादा
1: हाँ,
0: है
1: और नर हैं 4 और बाकी सब बच्चे हैं।
0: 4 नर हैं, 12 मादा हैं, बाकी सारे बच्चे हैं।
1: बच्चे हैं।
0: आगे हम ये जानना चाहते हैं कि भोजन में आप क्या क्या देते हैं?
1: भोजन में जैसे होटल का जूठा कट्ठा हो गया, या फिर हरा सब्जी का पत्ता हो गया, सब्जी मन का जो रहता है कतरन पत्ता उत्ता,
0: हाँ,
1: ये सब दे देते हैं, या सड़ा गला कुछ भी, शुक्रों को मतलब कुछ भी दे दिया जाए तो वो खा लेते हैं।
0: हाँ,
1: और कम बजट में अच्छा फायदा भी कर जाता है, क्योंकि खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता, वो मिल जाता है अवेलेबल।
0: बिल्कुल। अब हमें बताया कि ये जो शुक्र प्राप्त करना होता है हमें पालने के लिए, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं आप?
1: शुक्र हम लोग लोकल भी कहीं मिल जाता है, और नहीं तो गोरिया कर्मा है,
0: हाँ,
1: वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है।
0: अच्छा,
1: या
0: अच्छा।
1: फिर और भी जो शुक्र पालक लोग हैं उनसे लेकर के किया जा सकता है।
0: अच्छा अच्छा। तो बच्चे कितने दिन के होते हैं जब आप लाते हैं?
1: बच्चे 2 महीना का लाते हैं, 2 महीना में उसका वजन रहता है 12 से 15 केजी,
0: हाँ,
1: तो उन्हें लाया जाता है।
0: आप जब वहाँ से लाते हैं तो नर और मादा का ध्यान रखते होंगे, तो नर और मादा कितने कितने मात्रा में लाते हैं?
1: 8 मादा लाते हैं और 2 नर लाते हैं।
0: शुक्रों में कौन कौन से बीमारी होने की संभावना होती है?
1: शुक्रों में बहुत ज्यादा बीमारी होने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खास तौर पे ये ठंडे के मौसम में ज्यादा बीमारी का डर रहता है।
0: आप हमें ये बताएं कि जब गर्भवती शुक्री होती है तो उस समय उस शुक्री की क्या खास देखभाल करते हैं?
1: गर्भवती के टाइम में उस शुक्री को पहले तो अलग किया जाता है, 10-15 दिन पहले उसके जो रूम बना हुआ रहता आवास में, जैसे धान का कुंडा हो गया, पुआल हो गया, ये सब रख देना पड़ता है। बच्चे आने के बाद में खास करके ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब बच्चे दूध पीते हैं तो सुकरी से दब ना जाए।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसके लिए देखभाल करना पड़ता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है, 2-2 घंटे में या 3 घंटे में या दिन भर में एक टाइम जा करके देखना पड़ता है कि सुकरी जो है सो पलटने के दरमियान में बच्चे को दबा नहीं दिए।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: इसके चलते और दूसरा देखना, खास टाइम में देखना पड़ता है, जब सुकरी को आप खाना दे रहे हैं, भोजन
0: हाँ,
1: दे रहे हैं, तो भोजन के टाइम में जब सुकरी उठती है तो बच्चे को ज्यादा डर रहता है दबने का।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसी चलते भोजन देने जाए जब भी तो आराम से जाए और अग बका के नहीं जाए।
0: अच्छा अच्छा।
1: ताकि सुकरी एक बैग ना उठे।
0: अब आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब सुकरी बच्चे देती है
1: जी,
0: तो कितने दिन बच्चे को उसके माँ के साथ रखा जाता है?
1: सुकरी बच्चे जब देते हैं तो 3 दिन के अंदर तो उन्हें आयरन का सुइया दिया जाता है, और 1 सप्ताह के अंदर उन्हें एक दांत होता है सुकरी में, वो तोड़ दिया जाता है।
0: छोटे बच्चे में या बड़े सुकरी में?
1: छोटे बच्चे में होते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: ताकि वो बड़े होने के बाद नुकसान ना हो।
0: हाँ।
1: और 1 महीना यानी कि 1 महीना से पहले 28 दिन 27 दिन के अंदर बच्चे को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि 20 से 25 दिन में वो भोजन खाने लगते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो भोजन खाने के दरमियान में ही उन्हें अलग कर दिया जाता है, ताकि
0: हाँ,
1: फिर सुकरी अलग से तैयार हो जाए।
0: बच्चे को अलग करने के कितने दिन बाद वो फिर से तैयार हो जाती है गर्भ धारण करने के लिए?
1: बच्चे को अलग करने के बाद में कम से कम 10 से 15 दिन में वो तैयार हो जाती है गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन उन्हें खाना बच्चे देने के बाद खाना उन्हें ज्यादा देना पड़ता है,
0: ज्यादा मात्रा में, मतलब भरपूर भोजन देना चाहिए ताकि वो बच्चों को दूध बढ़िया से मिल सके और सुकरी की कमजोरी दूर हो सके।
1: हाँ।
0: आगे आपसे जानना चाहेंगे कि ये टेन की नस्ल वाली सुकरी है, वो एक बार में कितने बच्चे देती है?
1: वो फर्स्ट बार में 6 देंगे।
0: हाँ।
1: और सेकेंड?
0: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, अभी आम के मतलब कि कम से कम 6 बच्चे और ज्यादा ज्यादा 12 बच्चे तक ये दे सकती है
1: जी।
0: तो अभी आपके यहाँ कितनी गर्भवती सुकरियाँ हैं?
1: हमारे पास में अभी है हमारे पास 8।
0: 8 सुकरी जो गर्भवती है
1: जी।
0: और ये कितने दिन में बच्चे देने वाली
1: है? ये 20 से 25 दिन में बच्चे देने वाले हैं।
0: 20 से 25 दिन में बच्चे दे देंगी
1: जी।
0: तो पंकज जी, आपसे हम आगे ये जानना चाहते हैं अंत में कि आपने जब शुरुआत की थी उस समय आपने कितनी पूंजी लगाई थी?
1: जिस समय हमने शुरुआत की थी उस समय हमने लगभग 1 लाख रुपए लगाई थी। उसमें साइट बनाना पड़ा था, ये सब लगा हुआ करके 1 लाख रुपए लग गया था।
0: फार्म तैयार करके शुक्रों को ला करके लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आपका आया था। अभी आपके पास अगर देखा जाए उस समय की लागत और अभी की आमदनी के अनुसार देखा जाए तो क्या अंतर पाते हैं, कितना का?
1: अभी हमारे पास में तो देखा जाए तो लगभग 3-3.5 लाख का ऊपर ही है, और बाकी जो बेचे हैं वो तो हिसाब में है, तो पता नहीं।
0: तो इसका मतलब है कि सुकर पालन में काफी फायदा है।
1: फायदा
0: पंकज जी, ये कृमि नाशक दवा आप है सो सुकरों को किस प्रकार से देते हैं?
1: अगर 10-15 kg का है तो उन्हें आधा टैबलेट दिया जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और केजी के हिसाब से दिया जाता है, 15 kg से 20 kg में एक दिया जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: उससे ज्यादा बड़ा है तो 2 दिया जाता है। जितना वजन रहता है उस हिसाब से दिया जाता है।
0: और साल भर में कितनी बार देते हैं?
1: साल भर में कम से कम 4 बार दिया जाता है।
0: 4 बार दिया जाता है।
1: अगर गर्भवती अवस्था में है तो उन्हें कीटनाशक दवाई क्या कोई भी दवाई नहीं दिया जाता है।
0: तो क्या आप है सो सुकर को टीकाकरण भी करवाते हैं?
1: जी हाँ, टीकाकरण कराते हैं।
0: ये बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। ये सरकारी दफ्तरों में कहीं भी पशुपालन विभाग में जाइएगा तो अवेलेबल रहता है
0: टीकाकरण।
1: जी।
0: और इसमें किसी प्रकार का शुल्क भी दिया जाता है?
1: नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
0: चलिए, तो पंकज जी आपने हमसे बातें की और सुकर पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो अभी हम लोग जो जानकारी सुन रहे थे कि स्वरोजगार आये आय का बेहतर साधन में जो सुकर पालन है वो कैसे हो सकता है, सुकर पालन करके हम स्वरोजगार कैसे अपना सकते हैं, और ये बता रहे थे पंकज कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे प्रशांत कुमार।
3: तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम से अनुमति लेने का समय हो चला है, लेकिन इतना कहते चले कि मई का महीना चल रहा है कि कृषक भाइयों, तो ऐसे में आप ऐसे अपने खेत की जुताई गहरी करें ताकि है सो आपका खेत का मिट्टी पलट जाए और उसमें जो बसने वाले हानिकारक कीट हैं वो धूप के तेज मार से वो नष्ट हो जाएं और जितने खरपतवार हैं वो भी नष्ट हो जाएं और आपकी मिट्टी उपचारित हो जाए, इतना जरूर करें। इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबारी से मुझे प्रशांत को
2: और अलका को
3: अनुमति दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बाड़ी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: श्रोतो आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक के रांची केंद्र से। शाम के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और डीआरएम करुणानिधि सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2026 से एक वर्षीय और दो वर्षीय स्नातकोत्तर के नए पाठ्यक्रम और क्रेडिट रूपरेखा पर चर्चा की गई। गढ़वा जिले में ईंधन कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने सोनपुरवा से 13 अवैध रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए। वहीं लातदाग गांव के पास ऊंचे दामों पर गैलन में पेट्रोल डीजल बेचने की शिकायत पर एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। रांची के मनन विद्या मंदिर में यातायात पुलिस ने 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट के महत्व, साइबर ठगी से बचाव और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उपनगर आयुक्त पारुल सिंह के नेतृत्व में इमली चौक से आशियाना चौक तक सर्विस लेन पर बने अवैध

0: दफ्तरों और निर्माणों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। धनबाद में नागरिक एकता मंच ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर लोधना क्षेत्र से लोगों को जबरन हटाने का आरोप लगाया। मंच के सदस्य बिहारी लाल चौहान ने कहा कि समाजसेवी कुंदन पासवान पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और मोबाइल बरामद किए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को सूरज का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सोच का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये तो हम सभी मानते हैं। जैसा हम सोच रहे होते हैं, धीरे धीरे हम उसी के अनुरूप होते चले जाते हैं। मान लीजिए कुछ अच्छा सोच रहे हों, सकारात्मक सोच रहे हों, शुभ सोच रहे हों, शुद्ध सोच रहे हों, तो फिर इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सोच का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। या फिर हम दूसरी नकारात्मक बातों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क में, हमें, हमारे अंतःकरण में, हमारे चेतना के हिस्सा में ये सारी चीजें असर करने लगती है और हम व्याकुल और परेशान होने लगते हैं। इसलिए सोच सकारात्मक ही होनी चाहिए। और थोड़ी गंभीरता से विचार करें ना, तो व्यक्ति लंबे समय तक नकारात्मक हो ही नहीं सकता है। उसकी अंतर चेतना इसे कभी स्वीकार ही नहीं करेगी कि हम नकारात्मक हों, क्योंकि मनुष्य सेवा, प्रगति और अपने आप अपनेपन को धारण करने वाला प्राणी है। मनुष्य प्रगति के आकांक्षी होता है, उसमें सेवा भावना बड़ी भरी होती है और अपनेपन के बगैर वो जी नहीं सकता। इसलिए वो नकारात्मक हो भी जाता है तो फिर वो वापस लौट रहा है। कहते हैं ना कि ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, बिल्कुल है। तो इस दुर्लभ जीवन का लक्ष्य है जैसे खुश होना। तो कई बार होता है ऐसा कि हम खुश कैसे हो सकते हैं, तो खुश होने का एक तरीका है सेवा। अगर हम अपने जीवन को सेवा में लगा दें तो खुशी का अनुपात हमारे जीवन में स्वतः बढ़ता चला जाता है। हम सेवा कार्य करते हैं, कोई भी पसंदीदा कार्य अगर हम करते हैं, चाहे वो घर का कार्य हो या बाहर का कार्य हो या कामकाज के स्थल में हम कोई कार्य कर रहे हो, अगर काम मेरे पसंद का है तो अपने आप में एक तरह की उससे संतुष्टि पैदा होती है, तो और इससे हम खुश होते हैं। और फायदे और मुनाफे के बिना, अगर सोचे बिना अगर हम कुछ करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, देने की भावना से अगर करते हैं, तो एक आंतरिक खुशी हमें मिलती है। और ये चिंतन की बात है, अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प ले लें जिससे हमारा खुद का जीवन, हमारे समाज का, हमारे आसपास के परिवेश का, कहें कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेहतर हो, तो हमारे जीवन की सार्थकता इसमें है। जैसे हम ऐसे कुछ संकल्प ले सकते हैं जैसे जो पर्यावरण प्रदूषित होने से आसपास के इलाकों को हम बचा सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि दैनिक उपयोग में सिर्फ कपड़े और जूट के बैग का ही इस्तेमाल करें। अगर ऐसा संकल्प हम ले, ध्यान देने वाली बात है, अगर हम ये संकल्प करते हैं कि हम सिर्फ कपड़े और जूट के बने सामान ही इस्तेमाल में लाएंगे, थैले इस्तेमाल में लाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे अपने जीवन में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा और एक खूबसूरत दुनिया हम सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और धरती भी खूबसूरत बनेगी। एक मजबूत संकल्प हम सभी कर ले तो धरती पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मात्र एक संकल्प हम सभी ले लें तो आज से धरती प्लास्टिक के कचरे से मुक्त होने लगेगी। ये है संकल्प की शक्ति। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का बोझ धरती से कम होगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में हम लोग बहुत चर्चा सुनते हैं और इसे बौद्धिक चर्चा से उतार करके या बाहर ला करके आम चर्चा में इसे शामिल करना चाहिए कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका क्या महत्व है और ये क्या चीज़ है। जैसे हम जो चीज़ें हम अपने घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल में लाते हैं और वो एक यूज के बाद उसे हम फेंक देते हैं, वो सिंगल यूज है, एकल उपयोग इसे हम कह सकते हैं। और एक बार उपयोग करके अगर ये प्लास्टिक हम फेंकते हैं तो धीरे धीरे ये प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक का ढेर हम जमा करते जाते हैं और इसका जैसे जब इस आंकड़ों पर हम जाएंगे तो एक भयावह तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो आइए आज थोड़ी बातचीत करेंगे सिंगल यूज के इसी प्लास्टिक के बारे में, किससे धरती किस तरह प्रभावित हो रही है, आगे की चुनौतियां किस तरह की है और हम सभी की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो जैसे युवा साथियों, हम आपको बता दें कि
जैसे ये पर्यावरण को तो नुकसान करता है, ये तो हम जानते हैं, सड़ती नहीं है ये चीज़ें, एक ध्यान रखने वाली बात है। इसे बताया जाता है कि इसे गलने में 100 से 1000 साल लग जाते हैं और तब तक ये मिट्टी में पड़ी रहती है। सोचिए कितना खतरनाक है ये इस प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं। मिट्टी जैसे प्लास्टिक के टुकड़े मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर देते हैं और पानी सोखने की क्षमता भी घट जाती है। पानी और की बात चली है तो हम आपको बता दें, नाले और नालियों में फंसकर कहते हैं कि 80% समुद्री कचरा जो हमारा है वो प्लास्टिक ही है और ये बाढ़ का भी कारण बनता है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे बताया जाता है कि अगर कोई जानवर पॉलीथीन खा लेता है तो पेट में जाकर आंतें बंद हो जाती है और इसमें कुछ भयावह तस्वीर भी सामने आ सकती है। कछुए मछली पक्षी इसे खाना समझकर खा लेते हैं। समुद्र में हर साल 10 लाख समुद्री जीव प्लास्टिक से मरते हैं। ये एक अलग तस्वीर है जो चिंतन के लिए प्रेरित करती है। हम थोड़े इसका इंसानों की जो सेहत है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो धूप और पानी से टूटकर प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, ये पीने के पानी, नमक और मछली के जरिए हमारे शरीर में पहुंच रहा है। गर्म खाने को प्लास्टिक में रखने से BPA यानी फैटलेट्स जैसे केमिकल खाने में मिल जाते हैं। ये हार्मोन कैंसर बांझपन का खतरा बढ़ाते हैं। कई लोग प्लास्टिक जला देते हैं, इससे डाइऑक्सिन जैसी गजहरीली गैस निकलती है जो फेफड़े और कैंसर के लिए बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जैसे आर्थिक नुकसान भी इसका है तो किस तरह इसमें, जैसे मान लेते हैं कि नालियां जाम हो जाती हैं तो इससे साफ सफाई में भी जो खर्च आता है, और 90% प्लास्टिक कच्चे तेल से बनती है और एक बार यूज करके फेंकना मतलब तेल बर्बाद करना है। और पहाड़ों के बीच पर प्लास्टिक कचरा आप देख रहे होंगे भयावह रूप ले ले रहा है। शहरों में आप देखते होंगे, नालियों में आप देखते होंगे, तो इस तरह के कचरा मिल जाता है। पर्यटन स्थलों में खास करके आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग उपभोग करके वहाँ वो सारी चीज़ें फेंक देती हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे हम चर्चा भी कर सकते हैं कि इसके क्या बदलाव हम ला सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। जैसे एक तो हमेशा कहा जाता है कि कपड़े और जूट के थैले का प्रयोग करें, कपड़े और जूट के थैले का प्रयोग करें। एक संकल्प से इसे हम बदल सकते हैं, सिर्फ एक सकारात्मक संकल्प से हम बदल सकते हैं। एक आजीवन संकल्प हमें लेना होगा कि हम कपड़ा और जूट के थैले का ही प्रयोग करेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति, किसी भी मतलब परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा, हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपभोग नहीं करेंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे प्लास्टिक के बोतल का भी इस्तेमाल होता है तो प्लास्टिक या कांच के बोतल का हम यूज कर सकते हैं। कुल्हड़ पत्तल, केले के पत्ते जैसे देसी विकल्प बहुत पहले से हमारे यहाँ मौजूद है, तो ऐसा करके हम बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। तो ऐसे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो धीरे धीरे एक बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है, तो इस पर और भी गहराई से चिंतन मनन करने की जरूरत है। और सिर्फ कहना, इसे एक बौद्धिक विमर्श से बाहर निकालकर आम जीवन में, आम हर एक व्यक्ति अगर इस पर चर्चा करे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इसका कितना नुकसान है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। बहरहाल इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए देते हैं विराम, एक खूबसूरत से गीत के साथ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज एक भेंट वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले एक गीत सुनते हैं जरूरी संदेशों के साथ।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: युवा साथियों कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, एक भेंट वार्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एथलेटिक्स में युवाओं के करियर की कौन सी संभावना है, इस विषय पर। और भेंट वार्ताकार है मोहसिन खान और इनसे बातचीत की है अशोक कुमार ने। तो ये बातचीत सुनते हैं पहले।
1: श्रोता साथियों, पुराने जमाने की एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहावत को आज की युवा पीढ़ी ने गलत साबित करके दिखाया है। और आज ये कहा जा सक आपके जीवन गुजरेगी और इसमें बेशुमार करियर हैं, और चाहे वो एथलेटिक्स हो या फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, मतलब कि खेल जगत को अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो निस्संदेह रूप से आप आगे बढ़ते हैं और बेशुमार पैसा ख्याति सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही एथलीट्स हमारे बीच उपस्थित है आज के युवानी कार्यक्रम के माध्यम से, मोनिश रजा जी जो हजारीबाग कोटरा के निवासी हैं, और इन्होंने एथलीट में पूरे नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो मोनिश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, साथ से नमस्कार।
2: यस सर, थैंक यू।
1: मोनिश जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि जैसे एथलीट में जो है आप क्या करते हैं?
2: एथलीट में तो रनिंग में है सर।
1: अच्छा, दौड़ कितना मीटर का दौड़ की आपने प्रैक्टिस की?
2: तो नेशनल में अंडर 14 में 600 मीटर होता है, तो 600 मीटर किए थे, गोल्ड मेडल जीते थे।
1: अच्छा, उसमें गोल्ड मेडल, ये अंडर नेशनल प्रतियोगिता थी?
2: यस सर, नेशनल।
1: अच्छा, ये कहाँ पे संपन्न हुआ?
2: ये तो गुवाहाटी में होता, आसाम गुवाहाटी में।
1: अच्छा, ये कब की बात है?
2: ये कितना फरवरी 2021 का,
1: फरवरी 2021 में, यानी कि बीते वर्ष आपने।
2: यस सर।
1: अच्छा, एक वर्ष होने को है।
2: एक वर्ष,
1: उसके बाद फिर गतिविधियां आपकी चालू है, इसमें आप लगे हुए हैं?
2: हाँ, लगे हुए, प्रैक्टिस अभी चल रहा है।
1: गोल्ड मेडल जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
2: यस।
1: तो जब आपने इसे जीता तो फिर किस तरह से, कहाँ कहाँ से आपको के बारे में कहा गया, पूछा गया, लोग कहाँ कहाँ से मतलब बधाइयां आई
2: इस बारे? तो बहुत जगह से आए सर, पहले तो गाँव से, पापा मम्मी, उधर भी हॉस्टल में,
1: चारों तरफ से पूरा पूरी बधाई आपको मिली। कैसा महसूस किया आपने?
2: महसूस तो अच्छा था, और अच्छा करना, आगे भी बहुत बहुत चीज करना, भी
1: बहुत चीज हासिल करना।
2: ये तो पहला था,
1: ये अभी शुरुआत
2: शुरुआत
1: आगे अभी बहुत कुछ आपको करना है।
2: यस सर।
1: जी जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, कई सारा है, जैसे भाई हो या फिर पापा हो, वो कभी एथलीट या क्रिकेट या फिर खेल जगत में कुछ उन्होंने वैसा किया था?
2: पापा खेल में थे।
1: पापा खेल में थे। क्या करते थे वो खेल में?
2: फुटबॉल खेलते थे।
1: फुटबॉल खेलते थे।
2: यस सर।
1: अच्छा, तो उनको देख करके प्रेरणा आपको मिली होगी, ये कहा जा सकता है मोनिश जी भाई?
2: हाँ, उनको भी

0: देख के मतलब तब भी बच्चा से खेली में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में कम, खेल में ज्यादा है।
1: सही बात है। पढ़ाई वैसे आपने कहाँ तक की है? तो कहाँ तक पढ़ाई आपने?
0: तो अभी नाइन्थ में है।
1: अच्छा, अभी नाइन्थ में
0: पढ़ाई कर रहे हैं, डीएवी नंदराज में।
1: अच्छा, तो आगे पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोचे हैं या
0: फिर? सर, एकेडमी में वहाँ पढ़ाई हो रहे हैं।
1: अच्छा, आप लोग को कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि काफी दिनों के लिए ट्रेनिंग्स के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है?
0: हाँ, होता
1: तो
0: है।
1: उस वक्त का माहौल आपको कैसा, फिर घर की याद आती है या फिर आप उसे ठीक ठाक? मैंने तो मैंने की ट्रिप होता है
0: बहुत, मतलब दो तीन महीना बाद आते हैं घर, ज्यादा तो बाहर ही रहते हैं, नहीं तो घर में नहीं रहते, हमेशा बाहर ही रहते।
1: अच्छा, बाहर का आपका एक ट्रिप खत्म हुआ, फिर दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा आ गया। अच्छा, एथलीट जैसा कि हमने कहा कि अभी जो पुरानी कहावत थी अब वो बदल चुका है। अब क्या है कि अब युवा जो है सो खेल को अपना करियर बना रहे हैं और बेशुमार करियर की संभावनाएं हैं, चाहे एथलीट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, बहुत सारे चीज है खेल के, जितने सारे प्रतिस्पर्धा होते हैं उन सभी में जो है सो आज बच्चे आगे आ रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपका ये बताइए कि जैसे यहाँ तक गोल्ड मेडल पहुँचने में आपने कहाँ कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिया या प्रशिक्षण लिया, क्या खर्चा आया उसमें आपका?
0: ट्रेनिंग उसके लिए एकेडमी से ट्रेनिंग कर रहे थे, रांची में कर रहे थे ट्रेनिंग, तीन साल ट्रेनिंग की, उसके बाद
1: तीन साल आपने ट्रेनिंग किया
0: सर
1: रांची में।
0: रांची में।
1: अच्छा, इसकी शुरुआत हमने एकदम जैसे शुरुआत कहा जाता है, किस क्लास से आपने शुरुआत की थी, क्या स्कूल था या कहाँ था, कितना मीटर का दौड़ आपने टॉप किया था, निकाला था
0: वो
1: कितना मीटर का शुरुआत एकदम वेरी फर्स्ट टाइम?
0: फोर क्लास से थे। तो
1: वो कहाँ पे प्रतियोगिता हो रही थी?
0: फोर क्लास चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल में।
1: अच्छा अच्छा,
0: यस सर। तो
1: कितने मीटर की प्रतियोगिता थी वो?
0: तो फोर क्लास में उसमें थे, तो फिर ट्रायल निकला तो यहाँ पे सैफुल्ला गुड्डू सर थे, वही बताए, तो फिर वही लेके गए, सब चीज किए, तो वहाँ पे रांची में हुआ, तो फिर रांची में निकाले, तो फिर वहाँ एकेडमी में रहने लगे, फिर एकेडमी में दो तीन साल प्रैक्टिस किए, फिर अंडर 14 में आए, 12 में थे, बच्चा से थे वहाँ।
1: अच्छा,
0: तो फिर अंडर 14 में आए, फिर वहाँ गेम खेले, तो फिर वहाँ स्टेट में निकाले, मेडल फर्स्ट आए, फिर स्टेट के बाद नेशनल, इस जोन होता है, इस जोन के बाद नेशनल होता है, तो फिर नेशनल ऑल इंडिया से आता है, हर जगह से बेस्ट वन आता है, मतलब हर झारखंड से एक बेस्ट, बिहार से वन बेस्ट, इस टाइप से आता है।
1: तो उस हिसाब से आप खेलते चले गए और आज सबने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, एक बहुत बड़ा गर्व की बात है हजारीबाग की धरती के लिए, झारखंड के लिए और आपके खुटरा बस्ती के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे एज ए करियर इसको बनाना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी होगी, किस प्रकार से वो मतलब आगे उन्हें बढ़ना है, इस बारे में थोड़ा बताइए।
0: शुरुआत तो प्रैक्टिस, मेहनत सबसे जरूरी, मेहनत करेगा तो कोई भी आगे, मेहनत नहीं करेगा तो आगे जान।
1: जैसे हजारीबाग में भी है तो वहाँ से भी जुड़ने से कुछ लाभ हो सकता है, जहाँ भी हो, जैसे अपने क्षेत्र से, हाँ, जैसे कोच के सानिध्य में अगर ट्रेनिंग लिया जाए तो उसे लाभ हो सकता है,
0: लाभ
1: एक कोच की आवश्यकता होती है। हाँ। आपके कौन, आप जैसे आप इतना गोल्ड मेडल तक पहुंचे तो आप अपने कोच का भी नाम बता दो कि कौन कोच रहे हैं?
0: संजय घोष रहे हैं।
1: अच्छा,
0: संजय घोष
1: वो कहाँ, रांची में ही रहते हैं?
0: हाँ, वो कोलकाता के, हमारे रांची में रहते हैं, वही प्रैक्टिस कराते हैं।
1: कितने साल साथ रहकर आपने काम किया उनके साथ?
0: उनके साथ तो 2 साल रहे हैं।
1: 2 साल में उन्होंने आपको सब कुछ समझा दिया?
0: समझा।
1: अच्छा, इसमें ये 600 मीटर का जो आपने कहा समय कितना निर्धारित होता है?
0: समय 1 मिनट 27 सेकंड था।
1: अच्छा, तो वो कुछ ज्यादा भी होता है या मोटा मोटी 1.5 से 2 मिनट का ही रहता है? ये
0: डाउन भी होता है।
1: समय कितना आपने
0: 1 मिनट 27 सेकंड
1: में आपने कम्प्लीट किया? समय निर्धारित कितना होता है जनरली ये 600 मीटर के लिए? यही आसपास वो टाइम होता है, मतलब 2 मिनट के आसपास का समय होता है।
0: हाँ, दो मिनट पूरा नहीं, मतलब इधर नेशनल में मतलब आता है तो 35 से सब इधर रहता है, उधर कोई नहीं जाता है, 135 सेकंड से कोई उधर नहीं, सब इधर रहता है 35 सेकंड से नेशनल में।
1: अच्छा, जहाँ तक दौड़ने की बात है मोरिस भाई, तो आप ये बताएं कि जैसे जो शुरुआत करते हैं तो कौन सा वक्त सबसे उपयुक्त होता है, सुबह के समय में दौड़े या शाम के समय?
0: अभी तो ठंडा का समय भी ज्यादा,
1: हाँ।
0: मतलब बॉडी भी ठंडा का समय 7 बजे से स्टार्ट करी है, 7 बजे से ठंडा में ज्यादा, ठंडा भी सुबह ज्यादा ठीक नहीं, मतलब बॉडी भी क्रैम्प हो जाता है, इसलिए तो ठंडा का समय 7 बजे ठीक है, ऐसे गर्मी का समय तो 5:45 ये सब समय सही है।
1: अच्छा, जैसे आप जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तो प्रैक्टिस के समय किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है?
0: प्रैक्टिस समय तो
1: जैसे टाइमिंग, इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण
0: टाइमिंग सबसे जरूरी, टाइमिंग और स्पोर्ट में सबसे बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा सबसे सही रहेगा।
1: और इन सभी चीजों के अलावा इसमें खान पान भी ध्यान रखना पड़ता है। बॉडी आपकी अच्छी, डाइट किस प्रकार का आप लेते थे?
0: डाइट सबसे जरूरी, डाइट भी अच्छा रहना चाहिए, डाइट स्पोर्ट करने के लिए डाइट भी जरूरी है, डाइट प्रोटीन वोटीन।
1: जी हाँ, तो प्रोटीन डाइट जो आते हैं उनको लेते हैं। फल फ्रूट में कहाँ तक उपयोग करते हैं?
0: फल फ्रूट
1: आप अपने ही बारे में बताइए, कैसे बनकर
0: फल फ्रूट मिलता है वहाँ पे
1: हॉस्टल में? तो फल फ्रूट खाएं और प्रोटीन डाइट जो होता है उनके,
0: प्रोटीन तो
1: मिल्क दूध लेते हैं,
0: प्रोटीन में नहीं लिए, अवर 16 से ले रहे हैं।
1: अच्छा,
0: सर्दी रिकवरी का।
1: और अंडे वगैरह नॉन वेज में कुछ लिया जा सकता है?
0: नॉन वेज तो हमेशा वहाँ मिलता है, नॉन वेज जरूरी।
1: तो इन सब चीजों को आप डाइट में रखते हैं। हाँ। तो आप ये बता दीजिए मनीष भाई, चलते चलते हैं हमारे श्रोताओं को, कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम सब करते हैं पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से, और आगे तक जाएं। अभी आपका जो है, अभी आप फिर जैसे नेशनल लेवल आप खेल चुके हैं, अभी आपकी मतलब महत्वाकांक्षा क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं?
0: और सर, और नेशनल फिर इंटरनेशनल, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा, अगर 14 में मारे 16 में मारना होगा, 18 में मारना होगा।
1: हाँ,
0: अच्छा इंडिया के लिए कुछ करे, वही सोच है। भारत देश के लिए कुछ।
1: नेशनल तो आपने खेला ही है, इंटरनेशनल भी आप खेलना चाहते हैं?
0: इंटरनेशनल भी खेलना चाहते हैं
1: और आगे बढ़ना चाहते हैं
0: और आगे बढ़।
1: हमारे नए जो इसमें मित्र भाई आना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बस मेहनत, मेहनत सबसे जरूरी है, और डिसिप्लिन स्पोर्ट में, तो डिसिप्लिन सबसे जरूरी, डिसिप्लिन रहेगा तो सब चीज होगा।
1: और कोच को फॉलो करें,
0: कोच को फॉलो करें,
1: बेहतर कोच की तलाश करें। जी
0: हाँ।
1: तो मनीष भाई, आपने अपने बारे में ढेर सारी जानकारी दी, और एथलीट्स तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। आप खूब अच्छा करें, खूब आगे बढ़ें, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत।
2: एथलीट मोहसिन खान से ली गई बातचीत अभी सुन रहे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। और युवा साथियों, इसी के साथ ही युवानी कार्यक्रम का समय समाप्त तो हो गया है। तो बस इसी संकल्प के साथ आज के इस प्रोग्राम से, कार्यक्रम से, हम आपसे विदा चाहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में हम अपनी भूमिका तय करें, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को खत्म करना। हालांकि ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, हमेशा सिंगल यूज प्लास्टिक का हम उपयोग नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ मानक तय है, और भी फिर अगले कार्यक्रम में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस संकल्प के साथ, अगर एक मजबूत संकल्प, एक मजबूत इरादा हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए। तो सिंगल यूज के प्लास्टिक को पूरी तरह से बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तो इसी संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम से रेडियो के अपने साथी सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं सुन रहे थे युवा साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत,

आशिकी फिल्म के इस गाने के बाद अब हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, और हम आपको बता दें कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने आप के लिए लाया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को ऑप्शन रहे थे, फिल्म थे दिल है कि मानता नहीं। और श्रोताओं, इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 6:55 होने वाले कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्वी क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे जीएम। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में देश को नक्सल मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से पीड़ित रहे क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए नए वैज्ञानिक प्रारूप लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत मुक्त हुए इलाकों में शिक्षा, बैंकिंग और रोजगार से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी उसके पहले देश से नक्सलवाद

0: का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है और चौथी तिथि 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है।
2: हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस है कृषि की और 5 राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कृषि मंत्रीगण, कृषि से संबंधित पूरे वरिष्ठ अधिकारीगण भुवनेश्वर में बैठेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत के 140 करोड़ जनता के लिए कभी खाद्यान्न की कमी ना हो, अन्न के भंडार हम भरपूर करें और अन्न उत्पादित करने वाला किसान अन्नदाता नहीं जीवन दाता है, उसको सुखी कर पाए, उसकी आय बढ़ा पाए।
1: रांची के लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और रांची रेल मंडल के DRM करुणानिधि सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लंबित रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। CII स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दिल्लू पारिख और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष DB सुंदर रमन ने दावोस आर्थिक मंच 2026 में झारखंड को मिले मजबूत निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग की इच्छा जताई। इस बीच रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संवाददाता सम्मेलन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्राओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पेन, स्वीडन और दावोस दौरों को कई महीने बीत चुके हैं लेकिन राज्य में एक भी कंपनी ने निवेश नहीं किया है।
3: 1,30,000 करोड़ के निवेश की गारंटी लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल। निवेश में 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वीडन और स्पेन गए, 1 वर्ष बीत गए, डावोस गए, कई महीने बीत गए, 1 रुपए का निवेश है जो जमीन पर नहीं दिख रहा। अब हमें लगता है हेमंत सरकार की टूर एंड ट्रैवल पॉलिसी से यहाँ के युवाओं को ना तो नौकरी मिलने वाली है ना उनका कोई फायदा होने वाला है।
1: उन्होंने कहा कि दावोस यात्रा के बाद झारखंड को AI और डेटा साइंस का हब बनाने का दावा किया गया था जो जमीन पर विफल रहा। भाजपा ने इन यात्राओं के परिणामों पर श्वेत पत्र की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के SIR अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई।
4: जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति, किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है विकास में, उनकी भागीदारी कितनी रही है सरकारी ऑफिस में या फिर अन्य कामों में, तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए और फिर उस मापदंड को सामने लाके आगे विकास का मॉडल तय करना चाहिए।
1: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े अपने पुराने आदेश में बदलाव की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी रहेंगे। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
5: रांची यातायात पुलिस ने पुलिस स्टूडेंट संवाद श्रृंखला के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मनन विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमित उपयोग तथा ट्रैफिक सिग्नल के पालन के प्रति जागरूक किया। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2026 में जनवरी से अब तक 27 मामले दर्ज कर 63 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक कुल 706 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
6: वर्ष 2026 जनवरी से लेकर अब तक कुल 27 मामले दर्ज किए जिसमें 63 प्राथमिकी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और न केवल जेल भेजा गया बल्कि इनके अनुसंधान को लगातार मेरे स्तर पर और हमारी टीम के द्वारा इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है सो दैट कि इनके बेल वगैरह और इनकी डायरीज इतनी स्ट्रांग हो, प्रोसिक्यूशन इतना मजबूत हो कि इनको सजा हम लोग करा पाए और ये कार्रवाई और तेजी से और मजबूती के साथ आगे जारी रहेगी।
5: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 50.3 मिलीमीटर बारिश सिमडेगा के ठेठई टांगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बोकारो, धनबाद में ऑरेंज अलर्ट जबकि रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 23 मई को रांची, हजारीबाग और चतरा समेत 7 जिलों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी है। रांची के साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान में 22 मई से विशेष ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन होगा। रेलवे यूथ स्पोर्ट्स अकादमी के इस शिविर में बालक बालिकाओं को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सिखाई जाएगी। बीसीसीआई के सीनियर वीडियो एनालिस्ट चंद्रदेव सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों का वीडियो एनालिसिस के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्व क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे जीएम। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस द्वारा नक्सली एवं उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुरुमखेता जंगल से पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में मनोज लोहरा एवं महादेव सिंह शामिल हैं, जिनकी निशानदेही पर एक AK-47 राइफल समेत 3 हथियार एवं गोलियां बरामद की।

0: गई है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
1: पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस क्रम में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो है महादेव सिंह और मनोज लोहरा। उनके पास से जेजेएमपी के जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें एक AK-47 और मैगजीन के साथ और 88 राउंड गोली के साथ और दो SLR राइफल कुल 230 राउंड गोलियों के साथ, इसके साथ वॉकी टॉकी, पाउच, मैगजीन इत्यादि अन्य सामान भी इसमें जब्त किए गए हैं।
0: लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में आजसू पार्टी का प्रमंडल स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि
2: हमारे युवा इकाई के लतेहार, पलामू और गढ़वा इकाई के जो प्रखंड स्तर के जो प्रभारी हैं उनके साथ आज संयुक्त एक बैठक थी और ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह था और आने वाले कार्यक्रम को किस रूप से आने वाली राजनीतिक चुनौती, इस राज्य के गठन के उद्देश्य और आगे भविष्य में हम किस रूप से संगठन को और धारदार बनाएंगे, इस संदर्भ में आज चर्चाएं हुई है।
0: लातेहार जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला प्रशासन अफीम की खेती एवं मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन सभी संदिग्ध जमीनों का सत्यापन करा रहा है जहां अफीम की खेती होती है। इसके लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए गए हैं। लातेहार जिले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों एवं उग्रवादियों के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समस्याओं से जुड़े 59 आवेदन भी आए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
3: नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी के अंतर्गत लातेहार जिला में कुल 51 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। आसपास के जिलों से भी लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र में हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम किया पिछले 4-5 दिनों में। आज इसका आखिरी चरण है जो लातेहार में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। कुल 16 आत्मसमर्पित नक्सली और उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जितने भी देय लाभ हैं उनके बारे में इनको अवगत कराना।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में SIR के नाम पर वैध वोटरों का नाम काटे जाने की प्रक्रिया का विरोध किया गया। ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए बूथ लेवल एजेंट एवं 10 सदस्यीय कमेटी बनाने की चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ साहदेव ने कहा कि
4: झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा आज जो बैठक रखी गई है निश्चित रूप से SIR से संबंधित मेन एजेंडा हमारा है और उस समिति का पुनर्गठन है। हम लोग माटी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बूथों पे मुस्तैदी के साथ खड़े मिलेंगे और हमारा जो BLA है वह BLO के समकक्ष रहते हुए वैसे मतदाताओं को एक तरीके से सहारा प्रदान करेंगे जिनको डॉक्यूमेंट्स के अभाव में या बहुत सारा चीज बोल करके उनका नाम काट दिया जा रहा है।
0: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
5: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम झनकार।

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक को, कार्यक्रम का अगला गीत। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म दंगल से।

रॉक स्टार में भी आप सुन रहे थे मोहित चौहान को। इसी के साथ ही झनकार का हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ऑल टाइम हिट्स। श्रोताओं, ये कार्यक्रम पेश है, सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। और इस गीत को हमने लिया है, फिल्म का नाम हम आपको बता दें, प्रेम रतन धन पायो, हिमेश रेशमिया के स्वर में।

उदित नारायण को भी आप सुन रहे थे, फिल्म थी हाँ मैंने भी प्यार किया। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और नितिन मुकेश की आवाज में, फिल्म है कसम।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे फिल्म दबंग में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है नागमणि से और इस खूबसूरत से गीत को आवाज दी है सुरेश वाडिकर और अनुराधा पौडवाल ने।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की गाई सी खूबसूरत से गाने के साथ ही ऑल टाइम हिट्स का आज का खूबसूरत सा सफर यहीं समाप्त होता है। सूरज को दीजिए अनुमति, नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी चाहत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत में आप सभी का स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, फिल्म है चोरी चोरी। और इस खूबसूरत गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम भी हम आपको बता दें। दम्बाडी हरली के हमारे श्रोता उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपूर्व और टुको, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, ये हमारे श्रोता हैं पटेल नगर मलोट पंजाब के। शंभू ठाकुर, सुयोग ठाकुर, टोटल साव, सुजीत पासवान, महेंद्र राणा, दीपक पासवान, रणधीर पासवान, ये सभी हमारे श्रोता हैं शंकरपुर खपरियामा के। वासुदेव मालाकार, संगीता देवी, अनुपमा कुमारी, अंजलि कुमारी, ज्योति कुमारी, गंगा कुमारी और मिष्टी, ये हमारे श्रोता हैं बरही से। और कुछ और श्रोताओं ने इसी गीत की फरमाइश की, उनके नाम भी हम आपको बता दें। राजानगर के हमारे श्रोता हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, महेंद्र मोदी, भोलारा मधुर, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, नूतन मिश्रा, शारदा गुप्ता और घनश्याम राही का। खरसावा गांव दलाई किला के हमारे श्रोता है लक्ष्मण सोय, अमित सोय, गीता सोय, सरिता सोय और अन्नू सोय। और एक और खत इस वक्त इसी गीत के लिए हमें मिला है, उन श्रोताओं के नाम भी हम आपके साथ साझा करें। ये बरका खाना के हमारे श्रोता है अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहनी और अफजाल मलिक का। तो अपने इन सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला खूबसूरत सा गीत आप सभी के पास हम भेज रहे हैं।

मीरा का मोहन। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। और इन श्रोताओं के लिए, इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें। चेपाकला बड़का गांव के हमारे श्रोता हैं बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, दलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका, दीपिका का, अर्जुन राम, ये हमारे श्रोता है रांची रोड दिगवाड़ रामगढ़ से, मोहम्मद गुलाम अली, सद्दाम अली, पप्पू छोटू और रॉबर्ट, इन्होंने ये पत्र हमें भेजा है रसूलीगंज हजारीबाग से, अमित चटर्जी, करुणा चटर्जी, जय चटर्जी, वाणी चटर्जी, हीरा ठाकुर, ये सभी श्रोता हैं हमारे मटवारी हजारीबाग के। भाटापारा दतरंगी के हमारे श्रोता हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जहविंद्र कुमार वर्मा, विनोद विश्वकर्मा और प्रमोद विश्वकर्मा, ये हमारे श्रोता हैं ओकनी हजारीबाग से। कुछ और श्रोताओं के नाम हम आपके साथ साझा कर दें। ये हमारे श्रोता हैं जामठी वरुड़ अमरावती महाराष्ट्र के, मुकेश कासलेकर, दिनेश बिमल, विशाखा कासलेकर का। तो अपने इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए हम सब मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

लता मंगेशकर और इला अरुण को सुनते हैं, फिल्म है लम्हे। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें। पंचमंदिर रोड हजारीबाग के हमारे ये श्रोता हैं, कलाम अहमद आरजू, निरोफर फरवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशां परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन, फिरोज अहमद और समा परवीन आरजू। मेन रोड बड़का गांव के हमारे श्रोता हैं नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू, भोला और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने विषय गीत की फरमाइश की है। राहुल ये हमारे श्रोता है रूद इचाक के। अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस शेखांश गवाड़कर ये हमारे श्रोता है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के। और बहादुरा नागपुर के हमारे श्रोता है शैलेश गवाड़कर, वैशाली, श्वेता सुमित और धोनी गवाड़कर। सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से यह पत्र हमें मिला है, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकीजा बेगम, महमूद आलम, शहनाज नूरी, महफूज और शमशाद बेगम ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। और महादेव घाट अमलेश्वर के हमारे श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश्वर ठाकुर, तारनी ठाकुर और सूरज ठाकुर, ज्योति का। बगबुड़वा पथरिया के हमारे श्रोता हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मिलिंद दोवेश नेताम, अंबिका और योगिता नेताम। तो अपने इन ढेर सारे श्रोताओं के साथ आइए हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं इस खूबसूरत से गीत की। फिल्म है लम्हे, लता मंगेशकर और इला अरुण की मधुर स्वरों में।

नूरी फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। और उन श्रोताओं के नाम भी हम आपको बता दें जिन्होंने इस गीत की फरमाइश हम तक लिख कर भेजी है। हमारे ये श्रोता हैं दिलीप ठाकुर और अरविंद ठाकुर इंद्रपुरी हजारीबाग से। इंद्रपुरी साई मंदिर के पास से हमें यह पत्र भेजा है तिलक रॉय ने। झुमरी तलैया के हमारे श्रोता हैं जगन्नाथ प्रसाद साहू। सीताराम मलाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन, ये हमारे सभी श्रोता हैं जीटी रोड बरही के। यश चौहान, अंश चौहान, संदीप माधवी चौहान, ये हमारे श्रोता हैं बनोसा दरियापुर अमरावती महाराष्ट्र के। रेशम तिवारी, सोनम तिवारी, अलका तिवारी, हमारे श्रोता हैं जेल रोड रायगढ़ से। शमीम अहमद, निखत परवीन, तस्नीम अहमद, कोहिनूर बानो, खलील अहमद, हसीना खातून और नूर इस्लाम चांद, आरजू परवीन, ये हमारे सभी श्रोता हैं रेलवे स्टेशन हजारीबाग के पास से। कुछ और श्रोताओं के नाम हम आपके साथ साझा कर दें। कृष्णा कुमार गुप्ता, ये हमारे श्रोता हैं पंच मंदिर हजारीबाग से। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और किश श्रीवास्तव, ये हमारे श्रोता हैं शिवाजी चौक राजीम से। दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लक्की, ये हमारे सभी श्रोता हैं अमरपुर पेंड्रा से। ग्वालटोली चौक हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं कैलाश यादव, मनीष कुमार, विराट और इनके परिवार के दूसरे सभी सदस्यों ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। तो आइए इस खूबसूरत से गीत का हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है दलाल, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र मिले हैं उनके नाम भी हम आपको बता दें। शिवाजी चौक कटनी के हमारे श्रोता अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा और प्रकाश का। जागो निवास गली मटवारी हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं बबलू कुमार। शिवाजी चौक कटनी के ही हमारे श्रोता हैं पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और इनके मम्मी पापा। महलोनिया झरपो के हमारे श्रोता हैं रामचंद्र प्रसाद, अर्जुन महतो, सुनैना देवी, सुनील और डावर। बिलावर रहमतनगर के हमारे श्रोता हैं आरिफ, सबा आरिफ, समाजवी और अलिफ रजा का। सिंघानी कोर्रा हजारीबाग से यह पत्र हमें भेजा है रूबी देवी, सुमन रानी, श्री प्रसाद और अनुराग राज ने। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जयवेंद्र कुमार वर्मा ये हमारे श्रोता हैं भाटापारा दतरंगी के। ब्रजलाल सोनी इन्होंने ये पत्र भेजा है कुम्हारटोली से। अर्णवराज खुशी ये सभी श्रोता हैं कुम्हारटोली के। रिंगनी छत्तीसगढ़ से यह पत्र भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लवैसे गुलाबदास मानिकपुरी दतरंगी के हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा का। तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर इस खूबसूरत से गीत का हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत में श्रोताओं, अब बारी है कार्यक्रम के अंतिम गीत की। और कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा सिन्हा की आवाज में।

इसके बाद कुछ और श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें। हमारे ये श्रोता हैं डंबाडी हरली बड़का गांव के उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षिता पांडे, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपूर्व, टुक्कू और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इसी गीत की फरमाइश हमसे की थी।

श्रोताओं, इस गीत के लिए कुछ और श्रोताओं के पत्र हमें मिले थे, उनके नाम भी हम आपको बता दें। महेंद्र गुप्ता, श्यामलाल सावी और विजय सावी हमारे श्रोता हैं, ओकनी मंडप रोड हजारीबाग से। महेश राम, सरिता देवी, वर्षा, पिंटू और इनके परिवार के सदस्यों ने हमें पत्र भेजा है, बंजारी नगर पोचरा से।

0: शारदा सिन्हा के गाए फिल्म मैंने प्यार किया के इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत का आज का ये खूबसूरत सा सफर संपन्न होता है। आज के सफर में आपके साथ था आपका रेडियो के साथ ही सूरज। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो को घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट कार्यक्रम
1: के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के

0: सात जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे, खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

0: आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।
1: एक

एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ न कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

वेनसडे के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर

के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू

और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुबह भी आप सुन रहे थे फिल्म गजल में, और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया।

0: तो क्या हुआ? कल पगली
1: फिर सुना तो आगे हमारी फिर की मजबूरी तो जो मेरे करीब आया मेरे दर से पड़ा घिसाया
0: फिर क्या हुआ?
1: यूँ समझो ना गले लगाया
0: ची ची ची

0: हसीना प्यार में उसके धड़के में रात दिन चलता है सीना धक धक धक बात तो आई बड़ी अदा से बोली क्यों खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है गोरा और काला। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे के गाए कुछ गाने।

हम आपको बता दें कि आपने ट्यून किया है एफएम हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं आज के फनकार कार्यक्रम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे के गाए कुछ गाने।

0: से मीठा
1: होई होई होई।
0: इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता।
2: श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी

0: 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population.